ले रहा इन उंगारे खाने ने भैया कहीं ने खरीदू लमरील खान पांग बिल्लम जम वांग पूरी कंगले शुमा लमरील लोग ताकि शाम आपन पांग बिल्लम जम ने शियाला आप यहाँ में जुना शियालाई पूंबी भैया मेरे शरीर पूंबी मता भाभी जो तू ने ले रहा माघी माघी मेरू खूंग।

0: तो आई मता हो गल वॉकिंग से पछि नुआइत्रन
1: नुआइए
0: आ ला ला ला ला से से से संगोंग का सि याम कन साब सु ओइद्र
1: अदुगा लाई पाबा हो रसिको बाबा
0: ला ला ला
1: बाबा लाई पाबा हो रसे
0: परा हांग दो परा तो इमोंद खंग ल
1: बाबा तो सिदे लई जरे
0: बाई
1: छे
0: आ बापू हाय नाय को नंबो बापू हाय रसि कनानो हाय बदु नंग खंग ब्रो
1: खंगे महात्मा गांधी ने
0: जमे इसादि याम खंग मे
1: बाबा गांधी की वारी परा दुम याव एबको आइ न पि इंगै द गे दुम ममिंग ता रेङो बाबा बापू की वारी लिबियो वारी दि कुप न खंगद्रि ये
0: नीगे पालिगे अदु दि पुंग चंग न ताव को महाक पोरबंदर कौबा गुजरात की लममदा October ki tang ani English ngama ga chanipan humphu ko mapanda Hindu ki imungama da poki
1: o aduga mahaki mama mapa gi maming dikari kawe
0: mapa gi maming nam karam chan gandhi kawe Porbandar sar gi diwani haibdi phamnai ba mani ko mama gi maming na putli bai kawe mahakpu mama mapa na yam nangan na masagi chai tara humdoi su batai da luhung birami
1: e kai gino baba adudi mana am nongna luhungi dubu kai gino
0: matam du da anang wen luhung bugi chane bi si lai aduna ni nai ko gandhi ki wari si makha li dingi da sairing se mate ama han pa si ko
1: hoi baba
0: se se nang paro usaron haib se am maru ni usaron sing na paro ko
1: hoi baba
0: paro ke paro
1: adwa उसारोन लान बयाउर बसु चुनथो पिरौको बाबा
0: हा आदु कि द मक्तिनि ने इपान नार त फमि छे पारो पारो
1: हाउ रगे बाबा जब से तुमने शोरा संसार खोया इस जीवन का श्रृंगार तुम हो मानव के नव आधार सत्य अहिंसा के नए द्वार हे स्वतंत्रता के आराधक विश्वास आस्था के साधक दुखियों के लिए लौट आओ दिनों के दयानीय दशा देखो सुम्र बाबा
0: चुमे चुमदी चुमे को अदुबु अंगांग वबगी मोंग मदि दुम लै होइदा चासिदि अंगांग अहंग मानव याबा होन देदा हा यारे यारे
1: अदो बाबा चौराकपा आछमा हाइबियुने
0: हाइगे हाइगे नहांग नमाले मसी थादो खरबदा मांगख्रे पुंसीगी फजरब लेते नहाक तनी मियोय बाई खोई की अनोबा संजफम अचुम्बा अमदी अहिंसागी अनोबा थों हे स्वतंत्रता के पुजारी थाजबगी अमदी विश्वास की योगी खुदोंग थीरब सिंह की तमक अमुक्तदी नोगुम लखो मखोई न नंगलेबा अवाब से अमुक्तदी येंग लखो मसीगे नुंगी ओइबा अर्थदि गांधीना अहिंसागी आंदोलन कया हौदुना ममा लैबाकी दमक्ता निंखा तमनबो होनरमी ममा लैबाकी दमक्ता होनरम बनिपासिना संसार सि थादो खरबदा मियोइबिगी मसहादा चेलमबा अहिंसा हाइबा फजरबा नीति दो मांग

0: इब्राहिम अलकाजीना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की अहानब फाउंडर डायरेक्टर ओरमखी कुमसिंग लिसिंगमा चमापन हुंफुनी थोइदगी लिसिंगमा चमापन हुंपुतरा तरेत फाउबा चही तरा मंगा डायरेक्टर ओइना नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दा तंबी तक पिरामी महाग मसामकती अरब की इमुंग मनुंगी मियोइदी पोकपदी इंडिया की पुनी द पोकी महई मसिंग अराबिक इंग्लिश मराठी अमदी गुजराती लोल सिंग द तमलखी रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स रादा लंदन दा ट्रेनिंग तौरखिब मिसकनी प्रोस्नियम थिएटर अमदी ओपन एयर थिएटर अनिमकता प्रोडक्शन क्राफ्ट्स डिजाइनिंग ममुत ताना खंगबग लोइनना इंडियन क्लासिक प्ले सिंग दा महाकी अवांगब मिटियंग थमलखिबा मसक नाइब मिसकनी
1: रतन कुमार दिल्ली द थुंगलरे नवदीप की दी मफम सिन्म थुंगना महाकन खंगी शांति निकेतन की हैको लेकोन लोइन खंगी दिल्ली की हवा नुमशी की फिबम दी कया खुलोइद्री रतन कुमार ना दिल्ली की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द तमनबा इंटरव्यू याखिबसी थोकचोम चौकटोंबी की नाकता अपिकप का मचा अमद लेरगनी रतन थ्याम की मफम दा थोइदोकपा ताकनिंगाई लेखिदे मी कीब लेखिदे लोली लोइन खंगी हिंदी फजन गांगी केजब नौजब अरु अनान हाइबसिमदी पोकनेगिनी नुमितु कुचु कुमेन फजना अचंब फिजेत ओइरगसु पक्चन सेटलगा नुंगाइन इंटरव्यू याव चटकी इंटरव्यू लोबदा अलकाजी मसान लोबिकी अलकाना रतन कुमार गा वारी सानबदा हिंदी द सानखी हिंदी खोंथोक चुमना अमदी वाहंगी पाखु मतिक चान पिबदा इब्राहिम अलकाजीना पेन बपोकी अमदी करिगुंबा अपनब अमत यावदना मतिक चाब मिसक अम फंगले हाइदुना हरावना खुदकत इंटरव्यू दगी खनबिखे इंटरव्यू खनबगी पाउ ताबदा अपोकप मपाबुंग गुरु थियाम तरुण कुमार न कयाद हराउ जखिबा निंजरीब गोविंद गी मफम द खुरुम जखि हराउ तयाम बगलोइनना खुच्छा तराना नवदीप त लैरिबा श्री श्री महा अनुप्रभु गी मफम द जगोई रास की पुंगलोन सुन कचखि

0: हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम.
0: गुड मॉर्निंग. कना ओय बिरबनो.
1: मैडम,
0: होय होय, इसै खनबि द्रिंग ngai मांगोय ना नासोंग गि मिंग लै फम हाने खनजे गे.
1: आई मिंग शर्मिला खुराय लेवांग ब मनाक तिगी
0: करी इसै
1: अदुगा
0: ताबि गनि हाय बिरो.
1: एना काजे निंग ब इसै ना नसुंग लांगी हाइवा फिल्म दे देगी युगांथि ने सेरेंग बा हुइटों पुष्परानी सखबा ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯑꯃ ꯕꯤꯊꯤꯅ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯒꯦ.
0: ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯀꯣ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ.
0: ꯍꯣꯏ, ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯦ. ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯁꯣꯝꯗꯒꯤ
1: ꯃꯇꯦꯡ
0: ꯃꯇꯦꯡ
1: ꯑꯃꯇꯪ
0: ꯑꯃꯇꯪ
1: ꯈꯪꯖꯒꯦꯀꯣ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ, ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯑꯃ ꯕꯤꯙꯤꯅ ꯑꯃ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤ

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो, गुड मॉर्निंग कनाओ बिराबनो। गुड
1: गुड मॉर्निंग मैडम।
0: मॉर्निंग मिंग हाई बियो।
1: मैडम फोन तौज रही वे हा कोंब खिति लकाई तो बान दगी त खेलम हम दोले ने मैडम।
0: ngasi kari karamba film gi isai tabi gani hai bisi
1: inga le film dagi sibutho ina harau bubu ana ayau ba isai yama lai bune
0: hoi
1: adu khatang
0: hoi mate mate gama su kitang ngang thorak pada songgi konjel de kisu hena tazening basu ere ya biragadi isai thaze dringai mangoi na isai mate kam tang khodol tambi bisi
1: ida mathang dang ngang jarage ngang konjel jiam pinga tai ye
0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो तभी ब्रा
1: खितंग लेखा पियो मेदा या पिक नताई हेलो
0: होय होय अदुंगी सही खुदोल तमचरक लगे मैं यहाँ पुना तमिनर्स
1: होय नुगाजरे मेदा मुठागसर
0: थागचरी

0: हेलो हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग कनाई बिरबनो।
1: गुड मॉर्निंग। मैं साई वहीं कुमन मनी लेकर की नाम किसको हो गई?
0: करंब फिल्म की करंब इसे खन भी गनी तक भी
1: और मैं साई ने ताजनी लगे साफ़ भी फिल्म देगी आराम जमुना न सकवा कोई उम्म न सर्वोत्तम हाइन हो तो ताजगी में
0: होय होय खुदोल तम जरूर प्यार जा
1: हाँ
0: खुदोल तम जरूर प्यार जा सोम ने खन बिरिक बा इशा ये सी
1: ओ मिस मी हम भाई आप लो
0: या हैप्पी हो
1: ओ आज भी
0: ताबीनिंग बा
1: अहूँ का साथ सब ये कोई ना बोला तो मेरे चंद्रो अलवा कनो देगी वहीं खुमन मन लगाए देगी भर लाई माँ अलवा नंबों देगी ये जाइन हो जाए अच्छी है जनों जगह में
0: होय होय सोम ने खन बिरिक लिबा इसे खुदोल तम जरूर लगे मैं यहाँ पुनः ताबीनिंग
1: ओ
0: सी
1: थैंक यू।
0: थागे चली।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अदुमन ताबिरी बहसी आकाशवाणी इम्फाल की FM संगाई चैनल दसंदोक चबा गीत की थरमनी मथंग दे लोखा चरीबा गीत की सैसकलीबा सोनू निगम मदी कृष्णकाली शाह।

0: सुन जाते जाते एक गल सुन दी जा लाके कदे आस किसे खास ते ना बैठी जड़ा लंघ गया वेला इतिहास ते ना बैठी मुक जाना मैं सुख जाना मैं फुल जया लेके मेरी लाश ते ना बैठी
1: ताहंजरीब गीत असिग लोइनना पुंफम सिद संदोकचब गीत मतांग सिद लोशिनजरी
2: Assam Rifles, Thawal District, Assam Rifles Post, Ukhrul District Sports Association ki office near TNL Ground. Masjidu Sunnatana, Akashvani Imphal su min uba pogam match khudeng maki miyam da tab phangan jagani meeting tabiu adungi apam team support to view. Durand 2026.
1: मखल मथल की थवरम कया संदोकतुने ताहंजरी बासी आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजे मखा ताबा थवरम की दमकता लाइश्रम बिमोदा खुद से नजरी
3: थगचरी युरेका आकाशवाणी इंफाल की संगाई चैनल द दोंबो अमुक हन्ना तराम नोकचरी खुरमचरी संदोकचरी पर एफएम मेगाहर्ट्ज साम अहुम दशमिक मा
4: Lamdam masih yorak labada
5: Apollo Clinic Imphal.
4: Miram desa tu nushelam di mata manghendana world class health care gi kudung cabal lobiu.
5: Expert doctor singa tatok tasin tauba comprehensive health checkup, advanced oriba diagnostic services.
4: Home sample collection chingba adom na pamliba service kuding mag mapam amat tada pangaliba.
5: Apollo Clinic Imphal da ngasi mag lakpiduna lamdam masih gi miam da piriba thasa bayaraba quality leiba analayengi kudung cabal lobiu. Apollo Clinic Imphal. Malum tuliyama. Opposite Territorial Army Gate. Contact details 6009-586-410.
3: Akashvani Imphal. Haujik Lobby Resi Radio Drama. Pakhang Macha Thapali. Sanavi Gadaba Rup Mahal Theatre.

0: 哎，亚莲呢？能不？谁有来？你怎么来了？这天气不落 school， 放假咋了？
1: 星啦，什么都不妥了，我呢嘿。
0: 没事，俺个是的。school 天气不来，你能不？
1: 天气能你没跑步啊？
0: 哎，伊龙不破了吗？不呢？查卡米都在阿里阿了吗？呢？阿郎基老热阿克拉么？查红多，打乌个政府的他了吗？呢？天光么？查得哒？
1: 好，看见了不多。
0: 咦，没事，俺个是的。啊。ए जानकिया
2: से कदाई से ग्लास तो ऐसा मुड़ेगे
0: ओ कदूम दिनो मानो पौजी ले इसना
3: अय्या
2: थाबे ले दुबु स्कूल सेट्री बो
0: हम चत्री होजिक त सवाई दिस हेयो राइन मनी अ चक चारम बियाई मा
2: अ साक्ती
0: कई बो
2: हम कनान थोंगे हैपनी दा
0: कनान थोंगे केने जानकि पुंग ओहुम खाइद होगले वॉकिंग हक चलुरे इरु जथोए पुजारी होइथोए अंगांग हुदुए इंखोल कोइरेंग हा नंग लाइसिनि हुजि
2: ओ अदु दैदि अंगांग स्कूल सेक्रेनि कोन फेंगनि वाई तैरनि फीस हुरनि मिलगि सिंग सादबनिना चक्री तनि फौगाक तो सुरो सिंग खैगेरा खपकेरा तौरो लबुक तंगै हाके सलो अदु गने अदुम हनुरो
0: कैनु ने नुवाइ हिद्रे तजानके कैनु यारे नंगले लाक्तन थोंबिरब सुनतन
2: ए ई ई हा हा एंगोंदा बुत ताइनरा दना इस नोपु नोकनि ओ ता थबल जाउनने लुहोंग फान फम दना हनु खिबदने लैमन चंदना कंगदोबा लैरांग लैको सिहाड हेक फरि
0: ए लाउनो अंगांग तानि के युसुबो
2: सावरबो सावरि रगा मिना फागी तोरगा
0: सावदेदा केदोबि सावदेनो नंगना हायरे दुदि अचुमंगाक्तनि आइगि फिरेपति नंग खंगी दुदी
2: खंगी दा आइन खंगदे हायरबो सावरनो बा से
0: सावदे मि ओय बा अ नाकतंग फंगो आइ मोरा लथोगे
2: फमरोय दा आंगांग सेट खरगा ओइने लाके अदुगा नतिंग पांग लगे याब्रो
0: लाकनु मिन उरगा फजति नंगोन द मांगजे
2: नबु फत तोर कनु दा आइगोन द करी मांगी बा
0: मांगते दा अदु सु लाकनु आइ अदुम गमनब तोगे कॉलेज वायरम दी थाबले सुंगा मेदा अददा स्कूल चलम दाय दी आइना माबु तो हुंदा बगे वानी
2: होय आइ ला ओय सुंगला ला ओय
0: ई सावरी रो कै दोर के बा
2: कै सतो दे थाबले से क्लास 12 गाडी न त्रा
0: हंद था दोइनि दना खंग हो दे को
2: खंग हो दे को
0: इनो ओ ngo दी तो तोरिस
2: आइ मा अस आइ दी का गाडी आइ दी ngarang इसाई सले तंखमदा
0: ओ
2: पैसा गा किंगो खथामा से लिवाली सिंगमने
0: अदो हलकपदि थेंगमनि ने
2: आइ दी थेंगदेदा पुंतरा ताद्री इमा गसत पनी बुंगो से
0: होय खंगि दैसु अदुबु आइने खंगदबमदिले
2: कैनु आइने कैदौरगे
0: नंगनो फत्तब तौय हायबनतेदा नंगिलमनसे करमब मतमद सिंगमंगमगदगे आइ खंगदि हायबनिदा
2: हौरे अमु आइन खंगबा अमसुलैदा
0: करिबो नंग करि खंगिबा
1: बाबु
0: ए नंग लोयरबा
1: अस लोयरे मिने लोयरगा थोरासि मक्तदा निने ने जानकि नंग लाइरो
2: थाबले इमौदि लैसाबि फारेना
1: अस निने नंग अदुमा हायजनु अदु हायजनु को अदु आइगे सावबिनि
0: ला ला ला सिलो सिलो सिलो मनम नंबिरगेलो से से से से से नकुतो पिरो से लुपातरा से पैसलो से ज्ञान तान तान चलु को
1: औ बाबु बाबु बाबु गि चाक थिरम बनि को
0: होय होय होय होय ज्ञान तान तान चलु को
4: हाय हाय माय बम ने चक्र बनि हलक तनी थंग देबि जाने की
0: नोय मामा ने
4: हाय
0: मा मनम नमे गनि खाका रे
2: गनि खंगरोम बने मि अस कमाई दोने साक्सारों किनु को गनान तां खमदगी ने रोम मसा मसा ले पथोंग मे बा गारिन खासु पोर के बा
0: ओ होय होय
2: वरी सादो सियाम लेडी को
0: ओ
2: ला एला इना
5: थबले ए थबले
0: किनु ए
5: थबले
0: करिनो खुराइ रो करोम देनु नंग नंग फौसे ले इसना हां
5: मयाम बा
0: कैनो नंग पोरे दुबो
5: वाई निदा मयाम बा थबले दी हां
0: किन थबले दी हुजिक तो स्कूल चखरे ने हां
5: आई गे लेरंग मचिने थेंगनेयदा
0: छ अदुग इंगोंदो मोहंगिबा नाय खोन हे खुराइ रोय एबु नोंदा वाई पुर ओ हाइगि दि हे
5: ओ chi marang the mam choi da pi ge hedun purok ne ko
0: o
5: adu da tablet the na ba a ma na chi da thamamu ha de gi cha gi wa ne
0: pare pare pare yinde mo kong da hamin le ni na ko bora chi di mi gi ra
5: sa ai ni ba
0: is oi da mai ni na bora ka ya le jere da na se se se se ai gi bora mo hu che le ni bora mo hu chi pu ro adu ko ne che lu pa ta ra chi ne ne nang tan cha ru so tho bi ho ten da chalo chalo chalo
5: mayam ba
0: ha
5: mayam bo
0: kai do ru gi ni ya
5: janaki di janaki
0: janaki ke doroge
5: tabalindi sidela yui harami
0: o
5: tafuninu ko mayamana nang tafuninu ko
0: oine oine janaki do sidela ami adu chakre ba mamana koroktena why he nang sidi roi
5: mayamba
0: haone haone ke doroge
5: maga thangi janaki ji
0: hoine
5: layau da se chanjiro
0: chanji chanji layau budi yang wali da nang ba
5: adu di mae mae
0: mae mae mae mae ti nang na phado ba ma hai roko ओ चलो चलो चलो चलो उन्तो पनी देखो उन्तो पनी देखो
6: मी ले भी ब्रो कहीं नोट हंग जगे बा मी ले भी तो ब्रो
0: कना वो भी नंगो कना करी करी ताकि के तो बा
6: सॉरी साक्षारिंग इधर डिस्टर्ब तो बत हो माले

0: 여보 계셔.
1: 하윤이
0: 윌기 코피시 그럼 하이 티너 비라고.
1: 간디 너희 바바다 파자나 하이 크람님. 모원도 파자나 항오. 모원도 파자나 하이 크람님.
0: 바바다 항보 야드블 레이.
1: 거리게.
0: 아이나 하이자버두니까. 거리군바 에보게 사합나 마팅 빵비드 윌기 클루세. 샘전 사전드노 부토피 뱅가마바. 이소는 강츠노. 당카에메 에보게 사합기. 당카. 2.5 크로니까.
1: 오. 호이네 호이네. 아도보디 아이 밥다이네. 프로 아니 마카이 밤도 보글보 라이바 호나 브로
0: 아두니네 아두니
1: 아두다 클루드디 가다이데 티돌 하
0: 커리노네 하
1: 오짜이 제장슈나티 미니 나시다기 사히 따라따로키 마망다 망크비 누피 마차 아마니 라샤비 파라마니 가다이도노 마보 티루도시 하
0: 마티버디니네 아이네 나 사이 아이고 앙아오도노 마야이콘 요리시
1: 마야이콜 나온데디 마야이콜 디카나 하이리바
0: 헤라 나시다기 사히 따라따로키 마망도디기 ngasi phawo yumsi da leiriba pumna ma pu sa theng na horiba mi di ngangbi ton
1: yes
0: ngangbi ton haibi nupi asitani do
1: chome ama attendant han hanubi do
0: hanubi sine nungdang tumbada choro lolak pane ba ngarang nungdang se aina sangbi yumsi oda mamang da mayai kun hairga pangnok tuno e adu ge mungna he kre ni
1: as haina de hai nang wari se noi mungse kainomi tau tau ko gandi
0: sa du de hekta mayai kun chalurim ni ne kada ile mani angau tar ka dum hale edna
1: ngai kho gandi nang na baba khangan dana will gi clue si na thanda ko thi thi ris kari gi no nate laibak phob de gi phangle na khalo pumna mak si nang gi oi do na tra
0: kada ai de gi kada ai de gi ai gi sikim phob phangui
1: kari gi
0: e bo ge sa ai si chaw bo ni ai khui ma si baba na ma oi na lo bu ni ai ai chalak pa baba gi oi na di ichan pi ani si da ni सेबोगे साहेब बाबा ने इबो सोनो मुंसिबो जानति आंगांग ओइगे याम तेन तेन फोकर जानि
1: ओ
0: हिमाना लुखराव इन नउ न लाकोनि ना आइगे हकन चंग सुंगम दब एबोगे साहेब फंगु फंगाबा इसल अनि सिगिनि आइगे लुपा फाउ ग्याव रेको
1: कय गिया
0: एबोगे साहेब सु अदु माय कय लाक मग पिबि रकद्रा अदु फाउ थाजदे शाइलो ने शाइलो
1: ए अदु दि कदाय दे यार नेगे आइना स्वांग वारगा
0: अदुनु बु हजेबनिने एखै बाबा ठिकादार ब्रजमनिदा विल गि क्लू गि मतेंगसे पांगबिरो नो तंखाय बिरकदव आइगि इतेंग जखर पांगबि ओइमि
1: सदुदा वन थोक न लोखरिने तौदुरिसे
0: खै दोरगि
1: नंग विल गि कॉपी दु पारब न
0: थदु बुदि पारे
1: भजन रजिस्टर तौरमे सिग्नेटरी विटनेस लोइना मत वातना हौसि अखै न वाहि परेङा म फाबो होंगथोक लुब याब न तिने कैनो तौदुसे हां
0: नोनि तौस
1: ओइ दोब ममि मे यु उदबनिने तौरिसे गांधी गांधी
0: कई दो
1: नी लांग माले नी कना वई जानो
0: ए खुई मा वई रंगुनी दा कना हम त लाओई दा
1: आ गांधी आइसा लगे कोना मुला आगे कोना वारी दो छारे से बा
0: खै खुमी अदो आई नुंगदांग लक चौरा
1: ह नंग हयें वइन लाओ आई नुंगदांग से थब खरे लाइले ओय आइसा लगे
0: ओके ओके
2: लिंग गे हाई रोई बुओ ए बोके
1: ngai hak oi jere me yau jere ge de nei mai be ma
2: ai di ibung o khoi ge yau ro po ni ai khoi gan di ge samin na khi hairak pa de da sida leiram tare hai da na dum la aba
1: kari matang ge
2: a wari khra sananing bani da
1: mai be ma
2: gandhi
1: ma
2: nang bui bung o ayuk an ta thoki ba de gi na sak na sa hek te u de mau du doctor da check up chak ka dau ni kai si bu nang bu loi na kaw ro bro ha kai dau ra ge ba चलो चलो मसादो नुंगाइति हायोबनी मिरो नगा लैतबसिदा
0: अतु इमादि
2: ड्राइवर याउरिये नोय बाबा लाकप फाउदंगने लैरगने लागे
0: ओहोयमा दुदिया एबोकेसा
1: हा
0: लेंथु असिरा
2: हा इबुङो एबोकेतिने आइ थिलमगे यारनि नंग चलो मोदो मौदो चेकअप चतो बनत्रो नंगबो
0: मानेमा
2: चलो चलो
0: दुदिया एबोकेसा हाकदंग फंबियो खने
1: फानी फानी
2: से लिसिंग यांग खै खतने पाइसिलो हापक खिनि
1: करीगी करीगी पैसा ओरे बनो इमाय बेमा
2: आइगी नुपादसु इसा नुपादसु खंगल लकन नंग न अपाम बे अमाउंट आइने पिगनि विल गी क्लू पुथो उपाय मत फंग फम थोक पपुम नमक आइगी ओहेलो अपाम बे अमाउंट दो आइने पिगनि
1: इमाय बेमा आइबो आइबो बाप अमा
2: बाप ताबियो एबो के छाहे आइसे तुमनि आइगि नुपाना थमोय सेंग ननुसिबी बनति इन्द्री वारक पंगम देबिनी हाइदनने इसा नुपा गांधी ने आइबु मपुन सिगी वारो खरबनि आइगि नुपा इसा नुपा आइ

0: कहीं दौड़े था थबल।
1: ए, जानकी, ए किसी तो दिया, ए इंसान थे ले रा, कई इंसान हो।
0: इरोन बने, कहीं दौड़ गएगा?
1: इरोन बोल रही पांगने रहता, सुन, ए कहीं नॉम सुन, कलम बनी था।
0: उसी नॉम नी से, मावों में तो दौड़ गो, कहीं दौड़ गए बा, याँ कहीं नहीं, नहान कहीं का इमान माना दे।
1: मानते, ऐ सुपम सापम खंड्रे जाने की, नंग नदी मुन्न खंगी देना, अहल्ल मने तोम तो हुंदोक पीरंबे युम्दोम पोक्षी दा ऐ इतन तचाऊरक पनी, नो इमाना चाऊ यंग यंग पीरक पनी, पुम्नमक नंगे मित मांग दा हाउ की बंग आतनी, नशी देगी चही तरा तरुक की मांग दा, नो उमा अंगन बयुक कमदा, अंगां कपलक पम खोलता मापम शिमक तथा सही यम खरत तमक हेली भी थाबले ले रंब दो इपांग याऊं दने इतंतले जब आई इपांग अम इशोर्ण पी भी रखी बदो पाखंग ऐना इचा अम पंजकी बदो पुन्नमक न पम्नु न पोद न थे में द कपतु उयाद रब दो ऐना पमकां धमाना कपखंग ले ले अपलगा इंगों द तप नफ्से लखी बदो माप कौन बदो पाऊ की बा लुंबु लुंबु शाब इनिल माब कौन बदा पाखंग मपाम की मित्त यहूर की बप्पी नशी सुकाउ दरी जान की
0: ऐ पम नमक सिंगले इमाहोय अहल सिंगा पुलिस द टैक्सी खबर द हाप सी है बदा ताता बल जाऊना सिखांग खांग दुना याकी द बदो अगंगोई नहीं मत तकाउ दरे
1: हंडक्ती ऐ नुक्सा यम थीरे जाने के थाबले इसे इंगों दगी लाभों की गदरा चक्र गदरा ऐ यम वारे
0: अतु ती कहीं गया कहीं दौड़ गये
1: नरंग नहान दगी मसक्कन दब मी यम लाए अंगाओ भी मसुन नहान लामी थाबले ये मरम्द थीगत पगुम माले
0: कना कना नो हाई सिपो
1: कंधे हो जिक्त सुनो पी मलामी ना कोई न बवाम हो दोगा थाबले ये मरम्द थीगत पलाक पनी ऐ न तान करे
0: कहीं नूने हाई सिपो ताताबल्ली एंगोंडा कैंप्टा हाई देना
1: मना मनी ना हिंग दे दुना इन्हें मकाप फोंग दबनी वाह मेरी शोई दला ले रे हान बला अंबा याना नला अंबनु पादुगा अंगाओ भी दुगी मतुंग इन्हें रख पनु पादुगा सु मपा मचावेर माले अधुगा नशीला अंबनु पी दुना
0: मना हाई ना करिया
1: कहनो मगे लाख पशा जने रगे थाबले की मरम द खंग दो कदा भगी लाख पनी चप माने ऐ खंग जानकी ऐ ऐ नुकसान अम थीरे
0: कमाई दोंग निया दुदिया कोई मागा ताने सिरमी
1: नहीं को ऐ ऐ मौम तिंग यें की जानकी करी गुंबा थाबले की शेंग मामा मापा थोड़क तूना माँ वो इंगों दगी पुख रवती ऐ तो कमाई दोंग निया
0: हाँ हेरा दुमाई सु खलु ही नुदा अदु वो हेक ते आप रने
1: ऐ अंधे तिनों साय हम थीरे जानकी ऐ ऐ हम पकड़े
0: ताथाबल नंग हेंजन नखन मले धुमाई तो नो बा नुंगाई ती बा
1: ऐ ये थी कनाम तो सुले जी थी माँ खकते ने पुम्न मगने करी गुम्बा माँ चट खरगे थी ऐ ये थी कनागले होनी
0: ऐ ले ली सी थी ऐ ले ली है
2: बाबू
3: कहीं दौड़े आ
2: बाबू
3: कहीं दौड़े
2: हीरोइन तंदर है बाबू हीरोइन कोरी में दौड़े
3: हाँ करी क्या
4: मैं खुबा
3: करी क्या
4: थोड़ी सी मजंतर तो एक उन पियो बायें पंजे ही बा
3: नंग शेंग है नंग ऐसी तोड़ सके न हाँ शेंग न है कहीं नंग पामी से शेंग न खोमो न तो नंग चाय से तंदूर में
4: मैं अपुन यम ना है बंग मैं बंग
3: है
4: तब लेकिन मंगा चुने चिड़िया पे जंतर जे ऐसे पियो बा माने पियो याद रे बा ऐसे पियो बा
3: नंग दी तब लेकिन जंतर सी कहीं दोनों दूरी बा हाँ फजन खोमो ऐ पुरो चक पिज
4: नहीं
3: ना
4: थ
3: 모이디 가나
4: 아무 오빠는 봐도
3: 아누 오빠
4: 아도 아누 오빠 카톤 부두가
3: 카드 라파
4: 또 먹고네 또 아이고는 빠짜니 삐바 또 이모네 이모네
3: 루파 루파짜니 시모는 오는 삐리바
4: 먹고니 삐디디 나온 삐드로 쉬야 아이디 빠샴 방등인 거 또 타벌레 능 파티 능 아이고 주 폴레 능 파티 능 아이 쩔레 능 바이 능 쩔레
3: 자네끼 라우 시들 호마게 비범 시암도에 아 타벌레 시에 코시다 농민이 시 담배 아들

0: ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯣꯔꯣꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯕ꯭ꯔꯖꯃꯅꯤ ꯃꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯁꯥꯅꯨꯄꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯇꯝꯅꯔꯥꯏ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯔꯥꯖꯣꯒꯤ ꯃꯁꯥꯅꯨꯄꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯇꯝꯅꯔꯥꯏ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯂꯥꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗꯤ ꯆꯍꯤ 16ꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯄꯨ ꯊꯥꯕ ꯂꯩ ꯌꯨꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ
1: ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ
2: ꯎꯀꯤꯂꯤꯕꯨ ꯁꯥꯅꯣꯛꯇꯣ
0: ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯈꯨꯖꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯏ ꯇꯧꯀꯣ ꯇꯧ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯪꯅ ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯊꯥꯕꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯤꯗꯣ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯅꯍꯥꯛꯁꯨꯅꯦ ꯑꯋꯥꯐꯝꯗ ꯇꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨꯅꯦ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯒꯅꯤ
0: ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯆꯠꯊꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜꯂꯩ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯅꯔꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯔꯤꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤꯗ ꯅꯝꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯊꯥꯕꯜꯂꯩꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯁ ꯄꯤꯗ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯝꯂꯦ
1: ꯎꯀꯤꯂꯤꯕꯨ
3: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯋꯥ ꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯒꯅꯨ ꯑꯍꯪꯕꯗꯃꯨꯛ ꯈꯨꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯈꯪꯉꯕ ꯌꯨꯝꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯄꯨꯡꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯆꯩ ꯆꯥꯒꯅꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯊꯥꯕꯜꯂꯩꯁꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ
0: ꯑꯣ
3: ꯌꯥꯝ ꯂꯦꯡꯉꯣꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯝꯂꯩꯌꯨꯀꯣ
0: ꯑꯣ ꯊꯥꯕꯜꯂꯩ ꯌꯧꯔꯛꯑꯕꯗꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯅꯣꯏꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯑꯍꯜ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯉꯥꯡꯕꯤ ꯇꯣꯜꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯨꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤꯅ
3: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯊꯥꯕꯜꯂꯩꯁꯤ ꯆꯪꯍꯟꯖꯔꯛꯄ ꯌꯥꯔꯗ
0: ꯌꯥꯔꯦꯅꯦ
4: ꯁꯥꯔ ꯑꯅꯤꯕꯤꯗꯨ ꯌꯧꯔꯦ ꯁꯥꯔ
3: ꯆꯪꯍꯜꯂꯛꯑꯣ
4: ꯌꯦꯁ ꯁꯥꯔ
5: ꯕꯦꯝꯕꯦꯝ ꯃꯥꯅꯤ ꯅꯪ ꯅꯪ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝꯅꯦ ꯑꯕꯣꯛꯀꯤ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝ ꯈꯥꯡꯉꯨꯊꯛꯇ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯕꯣꯛꯅ ꯅꯪꯕꯨ ꯑꯍꯤꯡꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯈꯨꯟꯗꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯪꯒꯣꯜꯗ ꯊꯅꯝꯕꯅꯦ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯣ ꯊꯥꯕꯜꯖꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯕꯣ ꯑꯕꯣꯛ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯀꯣꯟꯒꯦ ꯑꯕꯣꯛꯀꯤ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝ
3: ꯄꯥꯕꯨꯡ ꯄꯥꯕꯨꯡꯗꯤ ꯊꯦꯡꯉꯅꯤꯌꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯟꯕꯤꯔꯣ
6: ꯍꯥ ꯑꯣ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯒꯦ ꯑꯩ ꯍꯜꯂꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯅꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯒꯦ
0: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯋꯥ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯥꯔꯁꯤ ꯏꯅꯦ
5: ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯦ ꯕꯨꯠ ꯃꯀꯣꯜ ꯂꯣꯜꯍꯟꯈꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯀꯤꯖꯒꯟꯕ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥꯏ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝꯒꯤ ꯃꯄꯥꯗꯣ ꯉꯥꯎꯅ ꯐꯩꯅ ꯉꯥꯎꯔꯛꯈꯤ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯔꯥꯖꯣꯕꯨ ꯇꯝꯅꯔꯥꯏ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯅꯦꯛꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥꯏꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯆꯦꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯝꯈꯤ ꯍꯨ ꯊꯛꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯔꯣꯝ ꯇꯃꯛ ꯉꯥꯏꯔꯝꯃꯤ ꯂꯟꯊꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯐꯣꯔꯥ ꯗꯂꯥꯜ ꯀꯩꯗꯧꯅꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯆꯥꯅ ꯆꯤꯅꯕꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯨꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩ ꯁꯤꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯉꯥꯎꯒꯦ ꯉꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯀꯅꯥꯕꯁꯨ ꯀꯤꯗꯦ ꯀꯤꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯇꯨꯃꯤ ꯂꯩꯔꯣ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯣꯠꯅꯩꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ
0: ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯊꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯗꯨ ꯎꯀꯤꯜꯅꯤ ꯊꯥꯕ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯛꯄ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥꯏꯕꯨ ꯃꯅꯥꯎ ꯑꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯊꯥꯕ ꯂꯩꯒꯤ ꯃꯃꯒ ꯃꯅꯦꯒꯅ ꯂꯥꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯕꯨ ꯇꯝꯅꯔꯥꯏ ꯁꯥꯅꯕ ꯅꯦꯛꯇꯨꯅ ꯀꯤꯒꯟꯕ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥꯏꯕꯨ ꯀꯤꯍꯟꯈꯤ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯑꯉꯥꯎ ꯑꯣꯐꯩꯅ ꯅꯥꯔꯛꯀꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯅ ꯋꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯂꯝꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇꯪ ꯄꯣꯛꯁꯤꯕꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝ ꯊꯥꯕ ꯂꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯕꯤ ꯑꯍꯜ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯉꯥꯡꯕꯤ ꯇꯣꯟꯅ ꯊꯥꯕ ꯂꯩꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯕꯜꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯊꯥꯕ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯈꯤ
7: ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯪꯀꯜ
0: ꯄꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝꯒ ꯏꯕꯦꯝꯃ
7: ꯌꯥꯅꯤ ꯀꯀꯥ ꯃꯥꯃꯥ ꯕ꯭ꯔꯖꯃꯅꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯁꯤ
1: ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯅꯪꯕꯨ ꯕꯦꯝꯕꯦꯝꯂꯣ ꯅꯠꯇꯦ 비엠비엠부 탑을 내이로 탑을 내시부 비엠비엠 라방 마시마땅에 마약생한비요 마시마땅 마약생한비요 아이네 파시차가 이까알부 주가하게네
0: 생한세게 생한
7: 바봉나 아이바 중간에 아이부 마학나 핵탱가바닥이 가시 파오바 아이가 다독나 잡아 이랄디 잔트라시니 Will na hiram basi soi dulat chungani, jendra se ay hangan jage.
3: Yani ibe ma somno bibiro.
7: Will gi marol si soi dulat chungga daba mali. Jendra manung da haplam ba che gi marol. Panchayat member na dao gi photo maning da yeng.
3: Photo maning da. Adu diya. Bukya adu diya. Amta yeng se.
0: Yai. Amta yeng.
3: Photo maning da. Amta yau din.
0: Ya.
3: Si amta.
0: Emblem da.
3: Si amta pati. Si amta pati.
7: Will gi ahanba copy di mayam loina painarabani na haujik photo maning da gi phangli basi ani suba copy dura mayam yeng biro
0: mayam te yeng bi yare
2: yare yare ko yeng
0: ah tap tapi tap tapi amuk tap tapi
7: marale basing aina chairak pijakhrani uncle 5 crore fixed deposit 16 years interest yaro gadi kayamuk oiragani
0: 5 crore 16 years interest 12 crore gumba oigedra
7: 12 crore
6: Janaki, kada isa luinang di?
7: Kaiso sate, tata bal thiru bani. Ngarang dagi yumda halakti kay gino. Thong kaksu matal loan de. Ngasay ayok dagi ne, ay na nang thiri se.
6: Ay, kada isa luinang yunok kang de. Labuk manak tap nong alak bani. Ado dagi, kada isa luinang bano ay kang de. Sumang si dalay misin.
7: Ay tinung sayam tiro de. Ngarang ada. Impal da kamay tong nagkagi. Taba lady.
6: Ukil sa nung na impal hotel de thami. Nung tilway de yumjaw de changi. Chummi. Taba lady do yumjaw dugi yumbur MB oirame. Marimata sagay natay tanaw kariho. Mayam na ngak siyendo na. Malay hore. Ayngon da Tiang kerana cutlo herak pada gigi. Iya, tuh mulai. Polis na ibu kadai pahwut thilam bano. Iya kangau tre. Janaki, kanam le tre. Iya, ithan tengah yore. Iya, ithan tengah yore.
7: Kayu no madia. Aduh mati, hak mandra. Bisa piklingai lagi. Lagi sabi papa pahwa. Poh duna pam duna yok birak liba. Mahagi nampak, pun nampak ketok serak lebat tata balbu. Dumai na hitri dah lain tak dorok pada dia. Mihi lisan nanti dah nama so.
6: Janaki.
7: Si kata pada gihingan bil. Aduh kabu, hosik na, aisyah kerja gih maya na. Tata balbu ek kau dorok pas dia.
6: Jare, Janaki, jare, cello, cello nang, potah jero cello. Cello, aisyu. Ngahak ta chik na potha jage. Ay ngahak ta ithan ta lay jage. Kanam lay tre. Ay ki kanam lay tre. Ay loy re.
8: Pabong! Pabong!
6: Kanana? Kanana?
8: Pabong! Pabong! Pabong!
6: Tabalay!
8: Chak loy re.
6: Nang?
8: Pabong! Chak loy re. Hanggam thong bani, ekoi degi poi ba, ai di cari, cari thok biro lau, kadai jalu ge pabuan.
6: Thabali, ibe ma, nang, ibu, mangla, mangla tai mangla.
8: Mang nati ya pabung, tai bang ne, cak tiram bani, ai school thengani, manam nam biro se, lupa tarapi uko.
6: Thabali, pagi ibe ma.
8: Ayuk ngantai ibu thilalak bani, ibu muhana tiranu. Mamang gi hau ki ba chahi tarataruk ai bu kaw tho ba dugum kaw tho na ba haira me babu
6: kari hai ba
8: mama brezamani matai manau di ain gi charak phangkhani mathol ahum gi chaura ba yum jaw do semjin sajil laga mama ma pa lai jadra ba ngang singi children home ama oirani fixed deposit ki senpham gi 70% cha ma da humdra di sarkar da officially sinaduna children home chalai bada angang sing du gi schooling bada sizinarani 20% amana Ayah bukan birakpi. Ayah kita makta mapun si tangkai hena awa bermayuk naraglabi abok ngang bitun dah kacaram leh. अरेंब सेंफम खरा दुना इबुंगा देगी खरा उकिल सानोगी खरा निने जानकीगी तादे इरोगी सुसरु थुंगनी हे पापो
6: नंग नंग दी नंगी दी
8: आईगी दी नंग ने पापो नंग नाईगी दी उन्नमक ने
6: पागी बीमा
8: यमजाओ दुगी मपु ओइबा लुबा क्रोर क्रोर गी मपु पृथ्वी की महारानी ओइबा आई पाम दिए पाबो आई पाम दिए
6: पागी बीमा
8: ले मौरी बा पुंसी की सरु कसे पाबुंगी सेवा फंजवदना लुबा क्रोर क्रोर गी सु हेले पाबो
6: थाबले
8: पाबुंग वान थाबक छोरगा एकोगे खंगपुक संग सिगी मनुंगदा पाबुंग वान थाबक छोरगा फंगला पखरा थोंग थाक दुने चामिन नबे इंजांग दुमु खाव बतुगो नखोगे यम जाव दुद लेरम गद्रो पाबो
6: थाबले इपागे बेमा थाबले
8: नंगी नंगल द चोरक पाइबु मितोप की मचानी मचाओ रमी हाय दुना इंथोक बिरा गेरा पाबो कदे कदे आगे लुपा तारा पीरो ऐसको ठेंग नहीं बा चाक चिरम बनी को
6: थबले इपागी भी मा थबले इपागी

धन्यवाद भीमो। यह आकाशवाणी इम्फाल का शंघाई चैनल है। 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतमाला। मैं वाईखोम सिंह खेंगानबा अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आपकी सेवा में प्रस्तुत है गाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस नए गाने से, फिल्म कबीर सिंह से अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीतकार है इरशाद कामिल और संगीत सचेत परंपरा का।

अभी आपने सुना फिल्म तमाशा से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया गीत। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत ए आर रहमान का। साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल के संगीत चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम गीतमाला के अंतर्गत गाने नए पुराने। अब सुनते हैं फिल्म झूमरों से किशोर कुमार का गाया गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत किशोर कुमार का।

अगला गीत प्रस्तुत है फिल्म आई हैड लव स्टोरी से सफकत अमानत अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार है विशाल दातलानी और संगीत विशाल शेखर का।

गीत माला थोरम तबीरी अदम थोरम तबीरी वसी एफ एम मेगा हर्षा महुम दसमिक मंगा दसंदोक चरीबा आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल नी

मखल मचल की थोरों के यादों ना आकाशवाणी इम्फाल की संगाई चैनल की ताबीरी संदुक चरी वाई एफ एम मेगा हर शाम अहम दशमिक मंगा हौजू लांथोक चरी रेडियो डॉक्यूमेंट्री सीरियल पोलोई अनिसुब तंकक अईब के एच गृह बला देवी खोंजल दा ईच

0: ताबा फंगदनी नसीगी क्लास 5 की हिंदी सब्जेक्ट की तांकक असिग मरी लैनाबा वहंग हंगजरी वहंगदी हुइनाउ मचाना ममागी लमन खुमनाबा कना कनागी मफमदा चंगजखी वहंग अमुक्तंग हन निंगसिंगजरी हुइनाउ मचाना ममागी लमन खुमनाबा कना कनागी मफमदा चंगजखी अचुंब पाखुम पीबीरक पसिंगी मनुंगदगी लॉटरी तौरगा खनगतलब महिरोय सिंगदा अहानब मना ओइना लुपा चमंगा अनिसुब अमसुंग अहुमसुब तारब सिंगदा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोंन पाखुम पीबीरक पदा इसागी मिंग क्लास अमसुंग स्कूलगी ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिकचुमने इबिरगा एसएमएस की खुथांगदा पिजरीब नंबर 9378120495 ता पाखुम पीबीरक पाखुम पीबीरकप मतमदा एपिसोड नंबर इबीरकप कौबीगनु प्राइज विनर दी ngasidagi chaiwol amagi matungda lawthoksegani ngasigi di mata ngasida kainaya thangni jeri pinabirasi
1: haujikta bikhre radio class chamri subna mari subatangkakta class 5 ki hindi mapan subapara मा का बदला थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ए समग्र शिक्षा मणिपुर की टेंबांग लोइनना संदोकचबनी
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है

स्टेट नोडल ऑफिसर थौबुबिरिबी डॉक्टर आर के रोजी उनदुना साबा वरी वताय उनदुना वरी सनजरीबी लोइटोंबम रंजना थौरम पुथोपी थोकचोम रेनोबला।

खुदलगिमरी सुबदमुख लखुचरी इचम चमना फिल्मसिदगी मेनका वाहेंगबमगी खोंजेलदा जितेन खाइदेमना सैरेंगबा मसुंग सैरांगबा इसैनी।

0: शिक्षण भी गदबा नापी मांगन बंगंबा मसल सुने या और बसाती दी संगी मको किए पनी काउबीरगनु लोमी सिंगे मरु साथी
1: EE maintenance to PSE din thadorok pawarol amagi matungena PSE digi ising seasonary bmiyamna July kuntra ma thoi lesingani kuntaru pawbogi manungda all bill arrears amasung meter gi dues concern office ta laklaga verified tauraga thidok pinabaning singjeri July kuntra ma thoi gi matungda di thidok haudaba consumer singi details mayamadu online portal the verified tauboda kudong chanaba upload tauragani hainasu khangalagli
2: आकाशवाणी इम्फाल हौजी निमिदांगी पुंग तरेट मखाई तारे मणिपुरी त पाउ ताबिरसी
3: आकाशवाणी इम्फाल आर के गोरानी न पाउ पाजरी अहनबदा मरोइबा पाउ मुख्यमंत्री जुमनाम खेमचा से अंद्रोद नौन साब इमा कैथेल खुदों मपाद थौबाल तुरें मथक साब थोंगनी संगाख्रे उख्रुल जिला की मनु चेना संगकाई कुकी खुलद खब इंडिया पोस्ट की पोचे पुब गारी फादुन पुरुरे सेक्यूरीटी फोर्स लमदान गेलजांग लोनब अवांग थब सरुकता थीब हम की थब सब खुशु खुला क्यामरुम फागले The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill singa kunturung asi Lok Sabha da puthokre amasung Delhi da sanction kiba mahiroi singa khongjang da police na kahen ba thong satha ki haina thangalakhi ba waka sing Supreme Court na hayeng khana na ba ayaba pi kre मुख्यमंत्री जुमनाम खेमचा अनुरोध नौन साब इमा कैथेल खुदों मपाद थौबाल तुरें मथक साब थोंगनी संगाख्रे संगाब की थोरम वा ngangladuna मुख्यमंत्री जुमनाम खेमचा हाई अंदो केंद्र से मौसा की फजब क्या लेब मफम मौसादगी मुत्तना लेरलब अंद्रो की मई हौजिक्सु ngak senduna thamli एशिया लमदमदा अंद्रो असे नाट अमदि चनेबिगा सागोनरकलब अरिब मफम ओइरी मांगना हाई अंदो केंद्र की मनुंग लेरिब इंटर विलेज रोसिंग फगत हनब सरकार ना लुपा कोटी तरह कायथोनब थौरांग तौरी केंद्र असिगी ओइना म्युनिसिपल ऑफिस लेत्रिब असिसु नोंग नसानब खोंगथांग सिंग पाइखत लगनि हाइब थाजब जुपीखि मुख्यमंत्री ना माखाता ना हाई मणिपुर हौजिक ओइदिब तंगदु लेता दब फिब मसिन राइज असके सेनमित लोन द साउना चैथिंग पिब द नतन मई मसिंग लमदसु अपन ब कयाम पीरी शांति लेब लमदम ओइरब मतमद सखत पुरो पंगम गनि मरम सिंह तंपा खुदारी फुरु खुद लमद शांति पुरब हमें मुख्यमंत्री अपील तौखी थौम अंद्रोद तोा तोब लूप रिटर्निंग वाल चल प्राइमरी ओजा लौब केंद्र सहो थर की थब पाखेपीब तोान तोान वफम्ब मेमोरीदम मुख्यमंत्री पेसी अंद्रो केंद्र की एम एल ए थोनाजम श्याम कुमार इम्फाल ईस्ट के डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर लाइ लाकपम निवेदिता प्लानिंग डिपार्टमेंट के मखोत ऑफिसियल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसियल कया थरम सरु याखी उख्रुल जिला की मनु चेना संगकाई कुकी खुलद खब मेयर इंडिया पोस्ट के पोचे पुब गारी फादुन पुरुरे अखोगी उख्रुल पाव की सोथिंग सिमरें हाई अयू पुंग तरह ताब मत लिटान पुलिस स्टेशन की मनु चेन येंगंग पोपी लिटान की मरक्त थोखिबनी केंद्र सरकार की मखाद लेरिब पोस्ट डिपार्टमेंट गारी अदु इम्फाल उख्रुल तम लाप सखंगदब मेयी फादुन पुखिबनी थौदोद मेय क्या यंथोकदब एटीएम कार्ड यौना मेल बेग कुंथ्रा मंगा हेना अमंगता थोलमखी अदुमैनम ड्राइवर अमदे गारी अदु असोयंगम यौना थादुरकले हाइरी थौदो असिगे मतान उख्रुल की पोस्ट मास्टर न हाइ
4: During the incident, several postal parcel, ATM card, passports, and other mail articles being transported by the Department of Post were burned and destroyed. The incident has been reported to the concerned civil and law enforcement authorities for investigation and necessary action. The Department of Post is assessing the extent of the damage and taking steps to restore services and assist the affected customers. Details list of damage and damaged articles and bag destroyed. For Ukhrul, 30 bags were destroyed. For Somdal, 4 bags were destroyed. And for Kamjong, 1 bag is destroyed.
3: तरानी सुब नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एन डी आर एफ ने बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुशमनरगा मऊसा की ओइब खुदोंथिब थोरपक मतमद मतौ करमना थेंगनगनी हाइबगी मतांगद सरकार कर्मचारी सिंग ओइबा डिजास्टर फेमिलियराइजेशन एक्सरसाइज मंगासी बिष्णुपुर मिनी सेक्रेटरी त पांगथोखरे ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯗꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯍ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ NDRF ꯇꯤꯝ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯤꯁꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯅꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯇꯥꯜꯀꯣꯇꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ 29ꯗ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯦꯜ ꯁꯨꯇꯤꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯂꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯅꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13ꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯧꯃꯤ ꯁꯤꯟꯃꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯛꯂꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯁꯨꯇꯤꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ꯫
5: ꯚꯥꯔꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯌꯨꯛꯇ ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯃꯣꯔꯆꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯃꯠ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯟꯖꯅꯕ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯨꯁꯨꯃ ꯂꯨꯄꯥ 26,000 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯣꯜ ꯄꯦꯟꯁꯤꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯪꯒꯜꯋꯥꯗꯤ ꯃꯤꯗ ꯗꯦ ꯃꯤꯜ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯋꯥꯔꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯔꯃꯆꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯣꯔꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛꯇꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ 13 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫
3: ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ APJ ꯑꯕꯗꯨꯜ ꯀꯂꯥꯝꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ CPR ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯌꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠ�ꯔꯛꯄ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ CPR ꯋꯤꯛ ꯀꯝꯃꯩ ꯂꯩꯅꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯉꯥꯝꯄꯥꯠ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯪꯂꯥꯇꯣꯝꯕꯤ ꯔꯦꯗꯤꯌꯦꯟꯁꯇ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯔꯠ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯥ ꯀꯔꯝꯅ ꯀꯟꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯧꯅ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯤ ꯌꯨꯅꯤꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯂꯝꯗꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯦꯜꯖꯥꯡꯒ ꯂꯣꯟꯅꯕ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ꯫ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ AK-47 ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ, ꯗꯕꯜ ꯕꯦꯔꯦꯜ ꯑꯃ, ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗ ꯁ꯭ꯅꯥꯏꯄꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯑꯃ, 9mm ꯄꯤꯁꯇꯣꯜ 3 ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯔꯥꯏꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯀꯌꯥ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯖꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯣꯡ ꯃꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯩ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯂꯦꯕꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯇ ꯂꯦꯕꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯄꯤꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ꯫ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯈꯝ ꯊꯦꯡꯅ ꯑꯋꯥ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯐꯪꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ꯫ ꯃꯥꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯂꯦꯟꯁ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯅꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ 13ꯗ ꯅꯣꯅꯦ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯖꯧꯖꯥꯡ ꯇꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯣꯡꯁꯥꯏ ꯄꯥꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯨꯅ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯣꯅꯦꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯂꯨꯄꯥ 100,000 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯣꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯂꯨꯄꯥ 100,000 ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯃꯟꯂꯝꯄꯥ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ 395 ꯁꯨꯕ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞꯀꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯂꯤꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯎꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯐꯝꯁꯤꯡ, ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯑꯟꯗꯔꯇꯦꯀꯤꯡ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯨꯇꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯈꯨꯃꯟꯂꯝꯄꯥ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ 90 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 3, 5, 4 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ 395 ꯁꯨꯕ ꯗꯨꯔꯥꯟ ꯀꯞ ꯂꯤꯁꯤꯡ 2026ꯀꯤ ꯃꯦꯠꯁꯁꯤꯡ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯕ ꯀꯃꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 5:00ꯗꯒꯤ ꯃꯦꯠꯁ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯃꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯏꯔꯤꯜꯕꯨꯡ ꯋꯥꯇꯔ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟ ꯁꯥꯖꯤꯟꯒꯗꯕꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯅꯦꯟꯁ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ 29ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯨꯝꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯕ ꯃꯐꯝ नीट की वाथोक विरोध ने चरंग नई चेरक बिल अथोखी बिल द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट लिशन कमी सामदोंब पांडम थमली सभा की मफम अहम तुम निद हम हाबद पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल सभाखी बिल विरोधी सदस्य हादत नीट की वाथोक वकट खों चंखीब मयूरों की मधक्त पुलिस चतकी तवों खनब दाबी तौर चंसी मदद अध्यक्षा ओम बिरला राजनीति दल की खेनब सदस्य पुनम नीट की वफम खनब दाबी तौर लापनी लोकसभा बिल अवब पुरक्नबी माइकई अहम खोंथांगमनी मदुगी ममांग इपु तरमाथोद लोकसभा की मिफम हेक हौबग अध्यक्षा ओम बिरला हौज स्कॉटलैंड की ग्लासगो चतरीब कुलुमदोई सुब कॉमनवेल्थ गेम्स भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चनू चनम्बम ऋषिकांत सिंह राजा मुथुपांडे पेरा पवर लिफ्टर जान्दु कुमार तकमा लौफंगलक्पद नुंगाइब फोंदोखी अमरुद विरोधी दल चरब थोपदी संसद की सभा अनम सभा की थरक थरम चतबद अकाब थोखी लोकसभा एग्जाम रिफॉर्म्स बिल की मांग चरबद की सभा की मिफम नुथिल पु मंगा फाउब यही राज्यसभा अतोप बिल की मांग चरबद सभा की मिफम नुथिल पु अहम फाउब यही एग्जामिनेशन पेपर लीक होगी वकट खों चंखीब मयूरों की मधक्त का हेन पुलिस फोर्स की मराल सिरप वकट क्या सुप्रीम कोर्ट हयें खनब अयाब पीख्रे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जस्टिस जयमलिया बागची जस्टिस बी मोहन याब बेंच वकट खों सरुक या इटेक तरह पुलिस पर्सनल खर की इमु थांगल्प तोानब वकट अत वकट हयें लोन खनगी अयाब पीखी सभा की थब चाथबद अपन पीब पब्लिक एग्जामिनेशन बिल खनब थीबगीदम केंद्र की पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री करे रिजिजू नंग विरोधी दल से मुक्न यानी फोंदोखे पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स पाबीद वांगद बिल पेपर लीक होब चेनब मराल मई अकब अकन चेरा पीब है श्री रिजिजू ने मूब वफम क्या खन नईब थीबना मयूरों अरान पाजे पीगनी मांगने विरोधी दल मयूरों की पुनिंग इहुलबु इकाई खुमनब प्रस्ताव तौर आयन से पुनम की कानगद मोद खन नब तकसी जे डी यू की लुचिब राज्यसभा एम पी संजय झा ने एग्जामिनेशन सिंह रिफॉर्म तौब हाई पावर टास्क फोर्स खुद थीजिब हंथहन टेक्नोलॉजी पागल हेन कंखलगनी पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स आकाशवाणी न्यूज श्री झा ने कमिटी असिने तुंग फुल प्रूफ एग्जामिनेशन सिंह होनब अफब पाब एम पुथोकनी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राज्यसभा एम पी तरुण चुंग ने परीक्षा अरान पाब थीब प्रस्ताव तौर बिल नारोल मयूरों की तुंग पुनसी अगाम थोदनब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अचेब फिरेपे उतली हौजि सानब की पा मंसाताब प्रेमानंद
6: ग्लासगो चतरीब कॉमनवेल्थ गेम्स भारत सना की तकमान लुपा की अनी सेंजेंगे पुनः तकमान मई फंग निपान सूबद ऑस्ट्रेलिया सना की तकमान तरह तरह लुपा की मापल सेंजें की तरह मई पुनः तकमान निफू फंग अहमद बॉक्सिंग किलोग्राम यांखई मंगा की नुपा की कांगुप्त जदुमणि सिंह पाकिस्तान की बॉक्सर माइव पीद क्वार्टर फाइनल चंखे पीटी पावर सु क्वार्टर फाइनल चंखे पुंग निपान किलोग्राम यांखई निपान की कांगुप की वेट लिफ्टिंग मणिपुर की विद्यारानी देवी फाइनल सानरगनी चाम कुंथ्रा मंगा सुब इंडिया वर्ल्ड दुरान कप की इम्फाल लेक हयेंद की इम्फाल की खुमलपाक मेन स्टेडियम हौरगनी अहोब मैच नेरोका एफ सी ट्राउ एफ सी थेनरगनी मैच हयेंद नुमिदांग वायरा पुंग मंगा हौगनी ग्रुप डी दौरीब टीम सिंह दी एफ सी रेंगदाय इंडियन नेवी फुटबॉल टीम नेरोका एफ सी ट्राउ एफ सी श्री श्री गोपाल देव कांखुद सिंधु चतरीब तरसुब लेट मंगसताब इबोयम एंड पुनेबती मेमोरियल लीग कम नॉकआउट कांग टूर्नामेंट लिंग कुंतरु की सानब मैच यास्कू कांखुद एल एस के बुपाजल तरह तरह तरह मरीद थोखे सेनापति डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन मणिपुर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सेनापति सिंधु एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड सेनापति पांथोप थोरम हंधक् मिंचत पुरखिबा मिनर्वा फुटबॉल एकेडमी की राइट विंगर पोतोवई

0: 자, 빠오부, 하라우타야는 옥북이 토르몬 빵 토크레. 볼 배드민턴 페더레이션 오브 인디아 기미니 모카다 세프템버 군노이드기 아드르 프레데사 빵 토크다바 홍부타르 토이 슈바 시니어 내셔널 볼 배드민턴 챔피언십 아무숭 사티스가르 빵 토크다바 니풍마 슈바 섭 주니어 배드민턴 챔피언십다 마니푸르 서욱 야나바 토랑 토리 챔피언십 싱아시기디기디막 서욱 야나부기디막 트라이얼 컴 셀렉션 빵 토크라가니 Tawaya wasanor singa thasi kuntra ki ayuk pung tak mukai tabam matamda Imphali si akampa talai ba nendit ki indoor basketball holda reporter na ba association na khangal dikli gorani
1: hauzik aroi ba da mar oi ba pau amohana mukhya mitri yunam khem chan nga si androda na una saba ima kai tel ama sung khundong ma pa da thobal tore mitak saba thonga ni sanga kre ukhrul jila ki manung chana leba sangkai ko ki kholda masa khangda ba singna india post ki pochei pu ba gari ema phadun puru re hairi Security force na lamdan amasong gelzangi lonaba awang thangma sarukta thiba humbagi thabak cha thabada khusukula ke amarum phagatle the public examinations prevention of unfair means amendment bill singni kuntaruk ngasi lok sabha ta puthokre amasong delhi da changsin khiba mairo singi khongjang da police na kahen ba thong ka ya cha thaki haina thangala ke bawa ka sing supreme court haiyang khana na ba ayaba pikre pauloi jare
2: खो गया इंतजाम
3: किसका
2: गुड्डी की फीस का
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत पता है कौन दे रहा है ब्याज कितना है लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत वो भी जांच कर हो गया इंतजाम पगार एडवांस में भेजिए
4: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव
5: आकाशवाणी इम्फाल डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर दहुजिक ताबिरसे चांदेल जिला की स्थिति अईबा एखोगी पाउमी जिरे मोयोन

0: 이세 시단 제키볼로이나나 나시교이나디 good evening 마니푸르기 토람다 돔나 코이다나 칸비럭바 풀마마디 마담이 세싱란 톡자바 마당아시다 루신저리 토람다 서로기 아비라키바마디 토람스 부타비리부 쿠딩먹부 아동기 앵컬 건쟁범 닐말라 제누나 아무카한나 타가르바 퐁독저리 토람 선독나 타한저리바시 메가르 샤무고흠 다스믹 망아다 산독자바 아카스바니 임팔기 FM 상하이 채널데기니
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी
2: ये राशन के 15,000 सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं
1: ओहो भूल ही गई थी अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए
3: पक्का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in

101.1 मेगाहर्ट्ज पर हर श्रृंखार और आज के हर श्रृंखार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है. प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें.

मोहम्मद रफी की आवाज फिल्म जानवर से ये गीत आपने सुना। दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी बातें जो है ना, हम कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। कभी बातें आंखों से होती हैं और कभी कुछ मुलाकातें अधूरी से रह जाती हैं। सोचते तो हम बहुत हैं, सोचा तो था आज की मुलाकात में बहुत सी बातें होंगी, मगर कमबख्त जुबान खामोश रही और आंखें बोलती रही। एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज साथ है लता जी का। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। ये गीत आप सभी के लिए।

प्यार का बंधन तो अनजाना ही होता है दोस्तों, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि प्यार तो जादू है जो हमारे दिल में बस जाते हैं, उनसे बहुत सी बातें करने का दिल करता है, मगर जब मुलाकात होती है ना तो उन्हें देखने से दिल कहाँ भरता है, जुबान तो जैसे खामोश सी हो जाती है और फिर हर बात जैसे आंखों से होती है।

अभिमान फिल्म से लता जी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना। 10:45 और 30 सेकंड हो चुके हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं

जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz और आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार। आज के हर श्रृंगार में आपके साथ है अर्पना, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म हस्ते जख्म से आपके लिए गीत।

कभी कभी आपको ये भी लगता होगा ना कि मुलाकातें जो हैं वो अधूरी रह जाती है जितनी बार भी आप मिलते हो, जैसे ऊपर वाला आपको इशारा कर रहा है कि ये मुलाकातों का सिलसिला हमेशा चलता रहे, क्योंकि अधूरी मुलाकातों को पूरा करने के लिए बार बार तो मिलना पड़ता है, जैसे हम और आप यूं ही FM गोल्ड पर बार बार मिलते रहते हैं। अगला गीत होगा फिल्म बदलते रिश्ते से। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और 11:10 पर हमारी और आपकी जो अधूरी मुलाकात है उसे पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले भी आप सुनेंगे क्या, 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा, उसका आप पुनः प्रसारण सुनेंगे और 11:40 पर आपके साथ रहूंगी गीत मेरे मनमीत में, मैं अर्पना। फिलहाल वक्त हो गया है 10:55, ये गीत आपके लिए और समाचार जरूर सुनिएगा इस गीत के बाद। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
1: मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कार्यवाही में बाधा डालने के लिए विपक्ष दलों के व्यवहार की निंदा की। हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जान चली गई है। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। अमेरिका और ईरान संघर्ष के दौरान सप्ताहांत में सैन्य हमले रोक दिए जाने के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमतें 7.2% गिरकर $89 और 74 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार वर्षा जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जलभराव से फसलों तथा बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 2400 घंटे अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by R.S. Raghu. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A report.
1: For the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments, while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation aims to strengthen the transparency, fairness and integrity of the examination system by establishing a robust legal framework while safeguarding the future of the students. It incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House.
3: I would like to thank you for providing adequate time for discussion on this very important bill. A large number of amendment notices have also been submitted, which clearly shows that many members wish to express their views on this significant legislation. We have also assured the House that sufficient time will be given for the discussion. Then why are they raising slogans and trying to disrupt this debate? The entire nation, especially the youth, is closely watching these proceedings. I once again request the Congress party to counsel its members so that we can begin a meaningful discussion on the bill.
1: Despite repeated appeal from the chair and the government, the opposition members were on their feet in both the houses. As the pandemonium continued, both Lok Sabha and Raj Sabha were adjourned for the day to meet on Tuesday. During the ongoing monsoon session, so far, no substantive business has been transacted in Parliament. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
2: Prime Minister Narendra Modi today interacted with Pawan Chandana and Naga Bharat Daga of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion, along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. He said their energy, ambition and positivity reflect the vibrant spirit of India's private space ecosystem. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government today informed the Supreme Court that it has set up a 4-member special investigation team, SIT, headed by Inspector General of Police, IG, for the Lucknow range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the 5th member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. The bench was hearing a batch of petitions seeking a CBI investigation into the allegations of embezzlement of donations and audit of the Temple Trust finances. Union Minister for Development of North Eastern Region Jyotiraditya Scindia today chaired the Ministry of Development of North Eastern Region Parliamentary Consultative Committee meeting in New Delhi to review the progress of flagship Unique Selling Proposition USP initiative. Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched the silver medal in women's 53kg category at the Commonwealth Games in Glasgow today. Asian Championship bronze winner Gyaneshwari lifted 88kg in the snatch section and 111kg in clean and jerk for a total lift of 199kg. Onome Omolola Didi of Nigeria won the gold with a Commonwealth and Games record total lift of 206kg. Another Indian weightlifter, Vindhya Rani Devi, won the bronze medal in the women's 58kg category competition. Vindhya Rani lifted 87kg in the snatch section and 112 in the clean jerk for a total lift of 199kg. And that is the end of this news bulletin.
4: Oh. अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. Today is Monday and we'll be taking your calls, listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I am Gaurandhavan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है, जहां हम ताजा आर्थिक खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और आपके प्रश्नों को हम सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, 2331-4444, 2331-0481 और तीसरा नंबर है 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके प्रश्नों के उत्तर देने और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा शिखरवार। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आर्थिक सुर्खियों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड दीपशिखा, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। A quick look at the headlines before we begin. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%.
1: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज 1% की बढ़त। सेंसेक्स में करीब 800 अंकों का उछाल और निफ्टी 24,000 अंक के आसपास पहुंचा। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार लाभ के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज लगभग 7% की गिरावट।
0: Listeners, before we move into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ। घरेलू शेयर बाजार के सूचकांकों में आज उछाल आया और दोनों प्रमुख सूचकांक 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 776 अंक ऊपर आकर 76,836 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 229 अंक की तेजी के साथ 23,996 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में भी आज बढ़त देखी गई। मिड कैप सूचकांक में 1.1% और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.3% का लाभ दर्ज हुआ। इससे पहले भू राजनीतिक चिंताओं में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच बाजार हरे निशान के साथ खुले। निवेशकों के सकारात्मक रुख के कारण सभी सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई, जिससे पूरे दिन कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर चढ़ते रहे। लगातार बढ़त ने दोनों मुख्य सूचकांकों को लगातार 5 दिन की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने में सहायता की।
0: Benchmark domestic equity indices rebounded today and ended 1% higher. The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with frontline indices. The mid-cap 100 index added 1.1%, while the small-cap 100 index soared 1.3%. Earlier, the markets opened with a gap up amid easing geopolitical concerns and a decline in crude oil prices. Positive investor sentiment fueled broad-based buying across sectors, driving the Sensex and Nifty higher throughout the intraday session. The sustained gains helped both benchmark indices end their 5-day losing streak.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 28 कंपनियों में बढ़त दर्ज हुई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल में 5.6% से ज्यादा, इंडिगो में 4.9% से अधिक और इंफोसिस में लगभग 3.7% की तेजी आई। इसके विपरीत HDFC बैंक में 0.4% की गिरावट आई और एक्सिस बैंक मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ।
0: In sectoral indices on the BSE, barring telecommunication, which dipped almost 0.7%, all other sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, mid-small private banks' quality tilt advanced over 2.3%. IT rose 2.3% and realty gained more than 2.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,779 companies advanced, 1,579 declined and 200 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 67 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.89 रुपए पर बंद हुआ। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज अगर बाजार की चाल पर नजर हम डालते हैं तो पता चलता है कि पांच दिन पिछले सप्ताह में गिरावट का सिलसिला देखा, आज उसमें सकारात्मक रुख नजर आया और अलग अलग हिस्सों से पॉजिटिव खबरें भी मार्केट पर आई हैं। तो इसके अलावा क्या आपको लगता है कैसे सेंटिमेंट्स रहे जिन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ अपग्रेड किया?
2: सबसे बड़ा जो एक फैक्टर निखिल जी रहा है आज बाजार में, जो अगर हम देखें जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आज जो विराम, जो फ्रेश अटैक्स है उस पे विराम अमेरिका ने लगाने की बात की है और ऐसा माहौल लग रहा है कि हो सकता है ये शायद एक ड्यूरेबल एक एग्रीमेंट की तरफ शायद मूवमेंट हो, ऐसी उम्मीद है और यही उम्मीद जो है बाजार में आपको दिखाई दे रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। उसके अलावा देखिए यूएस फेड का डिसीजन है जो इस हफ्ते कल मीटिंग स्टार्ट होगी, तो इन सारे क्यूज को बाजार देख रहा है। अगर आप रिजल्ट्स भी देखें तो वो पॉजिटिव रहे हैं, बेहतर रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। तो बाजार जो है वो होल्ड किया हुआ था कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बावजूद, लेकिन जब ये वेस्ट एशिया क्राइसिस में अगर आप देखें तो वो जब एक सिग्नल आया है तो वो बाजार में उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव क्यू मिला आज और वो इसीलिए रिएक्ट इस तरह से किया है।
0: We'd like to share with you listeners once again, we'll be taking market related queries. Our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And while we await listener calls, Deepshikha, you know, we've always been very gung-ho and very positive about the India growth story. And I think, you know, so much is happening across geopolitical tensions and everything. But let's focus a little on the India growth story. So good results, as you said, and I think oil prices, of course, will play a role. Inflation will have its own path to follow. But what about our growth story? Strong as ever?
2: Actually, if you look at the numbers which have been coming out, you know, first quarter beyond expectations, there's a lot of apprehension around monsoon, but there is a slight improvement now. And if you look at the sowing, that also the numbers are much better. So all these we expect will have some impact, positive impact in terms of the growth story that remains intact. And with the easing of West Asia oil prices, definitely, you know, economy, it's a very positive for Indian economy going forward. Expect that it will go as was expected in terms of performance.
0: Right. So the larger picture remains positive, green, and
2: that
0: and
2: is what
0: very, very optimistic.
2: That is what.
0: All right. And particularly optimistic, keeping global scenarios in mind.
2: Yeah.
1: Deepshikha ji, अभी जो मॉनसून की बात चल रही थी, जिस तरह से expectation थी कि मॉनसून का performance इस बार इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो अभी results अगर हम देखें और मॉनसून को देखें, तो आपको क्या लगता है कि market आने वाले कुछ समय में कैसा चल सकता है?
2: देखिए, अगर आप मॉनसून देखें, सोइंग देखें, तो सोइंग जो है वो काफ़ी हद तक पिकअप हो कर गई है। मॉनसून का स्प्रेड जो है उतना नहीं था, लेकिन इम्प्रूवमेंट आया है। अब उम्मीद की जाती है कि जो सेकंड क्वार्टर भी होगा उसका भी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा, स्पेशली बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहेगा कंपनीज के ऊपर, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आया है, लेकिन उतना असर नहीं आया। तो इस पर फर्स्ट क्वार्टर विल पॉसिबली एक्ट एज अ बेस एंड सॉर्ट ऑफ विल बिल्ड अपॉन इट।
1: इस बीच चेन्नई से हमारे साथ में विक्टर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विक्टर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
3: गुड इवनिंग सर।
2: गुड इवनिंग विक्टर।
3: गुड इवनिंग एंड थैंक यू मार्केट मेंटर टीम फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइडेड। My question is regarding gold prices, madam. So, what will be the upward trend or downward trend on the gold prices? Because we have seen a lot of volatility in the gold prices.
2: Yes, Victor. Gold, you know, typically this is not the buying season. If you look at the India, you know, historically, traditionally, I would not get into the prices, but gold still remains a good long-term investment. If and also, you know, just look at your portfolio and how much you can keep. Best percentage is like about 10 to 15% of your portfolio.
0: Right. We've always, you know, throughout the Market Mantra series that we've said, always said have a diversified portfolio.
2: Exactly.
0: And one of the diversifications is gold.
2: Gold.
0: You know,
2: now
0: do we say only have small cap, only have mid cap. So diversify so that it hedges you against different
2: exactly. You know, if there is a geopolitical, you know, crisis that we saw, or you know, inflation, the gold will act as a hedge in future.
1: Deepshika, abhi mid cap aur small cap ki hum baat kare to pichle kuch dino mein dekha gaya ki lagatar usme bhi giravat dekhi ja rahi thi, lekin aaj jaise kharidari bade paimane par hui to mid cap aur small cap mein bhi hame uchhal dekhne ko acha khasa mila hai, to ye rahat ka ek कह सकते हैं कि असर है या मतलब राहत की बात है क्या, अभी भी इसमें वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं?
2: निखिल जी देखिए, जिस समय तक वेस्ट एशिया में क्राइसिस, ये जो है इसमें एक बहुत कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है परमानेंट, तब तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उसके लिए सेंसिटिव जो है आपका स्मॉल एंड मिड कैप ही रहता है। तो अगर स्टेबिलिटी वहां आ जाती है, एक ड्यूरेबल पीस एग्रीमेंट कुछ हो जाता है, तो इसमें हम देखेंगे कि ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये उतार चढ़ाव कुछ समय तक रहेगा अगर पीस नहीं होता है।
0: राइट, सो दीपशिका, यू नो व्हेन वी टॉक ऑफ वॉलेटिलिटी एंड यू आर सेइंग दैट इट्स बाउंड टू बी देयर, बट इज देयर समथिंग कॉल्ड रेंज बाउंड वॉलेटिलिटी?
2: सो यू नो, इफ यू लुक एट, इफ tomorrow you know the pause is lifted, there's again a crisis, there would definitely, it won't be range bound. So what I'm saying is, if the if you have a durable piece in West Asia, if it is durable enough and we've seen good corporate earnings, then definitely mid and small caps will show a good movement. But this volatility, I can't say will be like range bound, especially because there is uncertainty in West Asia, on West Asia count.
0: So uncertainty filters down everywhere.
2: Everything.
0: Somewhere
2: exactly.
0: Trying to fix it, put a fine, where is the method in that? Uncertainty is uncertainty.
2: Uncertainty, yes.
0: Right. We have a next caller from Gurugram, Tarun. Tarun, welcome. Please ask your question.
4: Good evening. My question is, with respect to the diversification in the mutual fund portfolio, which of these two options is a better option? Investing in directly into a gold mutual fund, or investing in the gold through a diversified or a liquid mutual fund?
2: I think it is best to keep a very best to maintain a balance.
0: Right. In fact, you know, Tarun, and this is what a lot of experts also believe, that balance is the key. So if you're saying which is the best, both of them have their pros and cons, and our mutual fund experts invariably will share those with you, have been over the past few programs. But if a particular kind of a fund suits you, I think based on your risk appetite and based on your balance that you want to create, but I think balance has been a key which is advocated by most people.
2: Absolutely. I mean, if you have a diversified portfolio, you need to sort of have a diversified portfolio, maintain, keep a very balanced approach towards it.
0: Right.
1: दीपशिका, भी मार्केट की अगर हम बात करें तो देखा गया है कि लगातार कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो ऐसे सेक्टर्स थे जो कहीं रुक रहे थे उन्हें भी एक ग्रोथ मिल रही है। तो अभी हमारी जितने मतलब इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसीज की जब बात करते हैं, एक ग्रोथ रेट इसका हम बढ़ाते रहते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जिससे सभी को एक पॉजिटिव वे मिले आगे बढ़ने के लिए। आपको लगता है कि जो छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा अगर वो सस्टेन करते हैं चीजों को तो उनको बड़ा मुनाफा मिलता है?
2: देखिए, छोटी कंपनी में अगर निवेशक निवेश करता है, एक वो रिस्क उसमें ज्यादा होता है, एक रिस्क एपेटाइट रहता है, तो जैसा कि मैं हम लोग बातचीत कर रहे थे कि एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रखना आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो बेस्ट रहता है. आपका रिस्क एपेटाइट अगर ज्यादा है, अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो हो सकता है कि आपको रिटर्न उसी हिसाब से ज्यादा मिले. बट छोटे निवेशक हैं, बेहतर उनके लिए ये होता है कि वो रिस्क ज्यादा ना लें.
1: जी,
2: तो उनका जो बेट है वो ऐसी कंपनीज पे रखें जिनका स्टेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, देखें उसको, उसके परफॉर्मेंस देखें और तब घुसें उनमें.
1: और इस बीच भोपाल से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं. शंकर, आपका प्रश्न पूछिए.
5: नमस्ते मार्केट पंसर टीम.
2: नमस्ते शंकर जी.
5: मैडम, माय क्वेश्चन इज अबाउट इन्फ्लेशन. Government declares inflation or whatever, RBI tries to control the inflation, but our real life inflation looks to me very high, and banks deposits for our senior citizens are never able to, you know, cover up the losses, or it never actually gives beyond the, it gives always less than inflation. So how what is the solution for us to senior citizens? It is one thing, but we are not in a position to take much risk. So where should we invest so that we are at least not at loss in FD, bank FDs? Thank you.
2: Shankarji, this is a question which actually is a big dilemma for policy makers also. You know, when interest rates rise, they benefit the investors who have deposits in

0: banks or who are earning interest on their income. But it is also, it pinches those who have taken loans, who are also, who can be middle class savers, who have taken home loans or some other loans. But yes, from investment point of view, definitely inflation is always seen as a tax. It affects not just savers, but everybody else, even those who are going to purchase or households. Better would be to have a diversified portfolio, so you can also look at other investments, you know, just not bank FDs, but go beyond. And which is why we keep advising people to have a diversified portfolio, so that both your risks and returns are well balanced and met with.
1: दिल्ली से अगले श्रोता हैं नितिन हमारे साथ में. नितिन जी, आपका सवाल पूछिए.
0: नमस्कार नितिन जी.
2: नमस्कार, मैं मैडम से ये पूछना चाहूंगा, जैसे हम गोल्ड लोन सिल्वर का रेट बताते हैं, तो जो उसका प्योर सोना होता है उसका रेट कुछ मार्केट में खरीदने लगे तो उससे रेट से ज्यादा होते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा, सिल्वर का जो चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं तो वो भी चांदी के बर्तन प्योर नहीं मिलते, उसमें भी 50% के करीब मिलता है. इसके लिए हम इसके क्या चीज चेक करें कि जो हमारे चांदी और सोना, सोना तो फिर भी ठीक है, चांदी के जो बर्तन खरीदते हैं आने वाले समय में बर्तन खरीदारी करते हैं तो वहाँ ये बर्तन खरीदारी कर देते हैं, इसके लिए क्या उपाय है?
0: नितिन जी, आपके इस लाइन पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत क्लियरली आपका जो सवाल है वो समझ नहीं आया, लेकिन जितना मुझे समझ आया आप ये जानना चाह रहे थे कि चांदी के बर्तन जो हम खरीदते हैं बहुत प्योर नहीं होते हैं, इनको खरीदना चाहिए या नहीं. देखिए, बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, कहते हैं ना तो ज्वेलरी खरीदिए ना बुलियन में आप इन्वेस्ट करिए, तो चांदी का अगर आप प्योर उसमें खरीदेंगे तो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो वो बेस्ट होता है. लेकिन आप इस्तेमाल के लिए अगर खरीदना चाहते हैं या आगे गिफ्ट के लिए लेना चाहते हैं तो आप देख करके लें कि जो ज्वेलर आपको बेस्ट दे रहा है, जो आपके विश्वास का है और सर्टिफिकेशन कुछ आपको उसकी गारंटी दे रहा है.
1: इसमें एक चीज उन्होंने और पूछी थी कि इन चीजों का बफर स्टॉक कर सकते हैं हम या जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दोनों में से क्या प्रॉफिटेबल है?
0: नहीं, तो जैसा कि मैंने कहा, ये बर्तन वगैरह ठीक है, आगे अगर दाम बढ़ेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन प्योर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप बुलियन में कीजिए, मतलब उसके बिस्किट खरीदिए या कॉइन्स खरीदिए, बर्तन में आपका वेस्टेज बहुत हो जाता है.
3: राइट, डिपेंड्स ऑन द पर्पस कि किस पर्पस के लिए,
0: किस पर्पस से, अगर आप आगे देना चाहते हैं या आगे रिटर्न के लिए शादी ब्याह के लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका मेकिंग चार्जेस, आपका बाकी सब भी बढ़ रहा है, तो आप
3: उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेगा,
0: उतने प्रोपोर्शन में, हाँ, तो आप वो खरीद के रख सकते
3: हैं. जी जी. भिलाई से वी हैव रवि. रवि, स्वागत है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: नमस्ते, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा.
0: गुड इवनिंग रवि.
4: मैडम, मुझे जानना है,
1: आई थिंक उनसे हमारा संपर्क टूट गया है किसी वजह से.
3: द कॉल ड्रॉप, बट मीनवाइल वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेल टुडे रिपोर्टेड इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर. द कंपनीज स्टैंड अलोन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रोज अराउंड 25.3% ईयर ऑन ईयर to 5,533 crore rupees. Bell standalone net profit increased by nearly 8.2% to over 1,048 crore rupees on an annual basis.
1: आगे बढ़ते हैं. प्रमुख एशियाई शेयर बाजार सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.1% से अधिक ऊपर आ गया. हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1% की तेजी देखी गई. सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में लगभग 0.6% उछाल आया और जापान का निक्केई 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ. वहीं दूसरी तरफ ताइवान का ताइएक्स मामूली रूप से नुकसान में रहा. लास्ट वीक में जब हमने देखा तो एशियाई मार्केट्स में पहले सकारात्मक रुख देगा या उसका फिर गिरावट का रुख आया, अभी फिर बहुत ज्यादा उछाल नहीं लेकिन एक बैलेंसिंग उछाल देखने को मिला है, तो ये जियोपॉलिटिकल असर रहा इस पर या मार्केट का कुछ असर रहा?
0: देखिए, जियोपॉलिटिकल असर तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो है आईटी कंपनीज के अर्निंग्स को लेकर के बेहतर अर्निंग्स आए कुछ अमरीकी कंपनियों के, जो लार्ज टेक कंपनीज हैं, उससे

0: डॉलर तक पहुंचे, उसके बाद अब लगातार ये गिरावट का रुख दे रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो इस महंगाई और चालू खाते के घाटे के संदर्भ में अगर देखें तो कैसा आपको लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी और उसका असर नो डाउट मार्केट पे जरूर पड़ेगा।
1: बिल्कुल, देखिए इन्फ्लेशन पर तो बहुत ही पॉजिटिव असर होगा क्योंकि क्रूड गिर रहा है, बराबर हमारा आयात बहुत ज्यादा होता है और करंट अकाउंट के लिए भी आपने जो पूछा उसके लिए भी एक बहुत पॉजिटिव है क्रूड का गिरना।
2: In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading nearly 0.7% up at 1,44,750 rupees per 10 grams, while silver was trading 0.7% up at 2,24,510 rupees per kilogram a short while ago.
0: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.6% बढ़कर 1,43,970 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.8% की बढ़त के साथ 2,23,862 रुपए पर थी। दीक्षिका जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा के लिए, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद निखिल,
2: एब्सोल्युटली थैंक यू फॉर कमिंग ऑन टू आवर प्रोग्राम। Listeners, before we close, a quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices surge 1%. Sensex rises almost 800 points. Nifty settles at nearly 24,000. Most Asian stock market indices register gains. And global crude oil prices tumble around 7%. And that's all in today's program. Till next time, Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत 11:44 और 30 सेकंड हो चुके हैं। अभी जो आपने गीत सुना उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं, तेरे घर के सामने फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफी की आवाज थी, एसडी बर्मन का संगीत और हसरत जयपुरी का लिखा हुआ ये गीत। अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म अलबेला से, ये खूबसूरत सा गीत होगा चितलकर की आवाज में। चलिए सुनते हैं ये गीत, गीत मेरे मनमीत, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आज आपके साथ है अर्पणा।

अगला गीत ओपी नैयर की रचना है और गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है. आशा जी की आवाज में ये गीत होगा. आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत.

जा तो आप कहीं नहीं सकते, ये हमें मालूम है, क्योंकि ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, गीत मेरे मन मीत। अगला गीत आप सुनेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दूं, किशोर कुमार और आशा जी की आवाज है, एसजी परमन का संगीत है, फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। और इसी के साथ अर्पना भी आपसे इजाजत चाहेगी। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार, 11:55 और 44 सेकंड हो चुके हैं। तो चलिए गीत का आनंद लीजिए, अर्पना को दें इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर उनसे चर्चा की। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। स्थानीय निवासियों ने ये जानकारी दी। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों और दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपए और उपविजेता को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कास से पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

जमीन आसमान फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में. अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने. वीकेंड की छुट्टी कब पलक झपकते बीत जाती है पता ही नहीं चलता. फिर आता है सोमवार, ढेर सारी जिम्मेदारियां, काम का लंबा सिलसिला और भागती दौड़ती जिंदगी. पूरे दिन बस यही लगता है कि कब थोड़ा सा सुकून मिले और कब अपनी पसंद के गीतों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिले. और अब दिन भर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो सुकून भरा पल आ ही गया. अब वक्त है सारी थकान को पीछे छोड़ने का, मन को हल्का करने का और उन सदाबहार नगमों के साथ कुछ खूबसूरत लम्हे जीने का जो हर तनाव को पल भर में भुला देते हैं.

दुनिया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वीकेंड की यादें अभी पूरी तरह धुंधली भी नहीं हुई कि सोमवार अपने साथ जिम्मेदारियों की लंबी फहरिस्त लेकर आ गया। दिन भर काम की रफ्तार ऐसी रही कि खुद के लिए दो पल निकालना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अब जब रात धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही है तो मन भी कुछ सुकून के पल समेटने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये सच है कि दिमाग के किसी कोने में कल सुबह के कामों की तैयारी भी चल रही है। अलार्म का ख्याल, अधूरे कामों की सूची और आने वाले दिन की योजनाएं। मगर जिंदगी का खूबसूरत संतुलन शायद यही है कि जिम्मेदारियों के बीच भी हम अपने लिए कुछ पल चुरा ही लेते हैं।

वक्त हुआ है 12:29 और ठीक 46 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

बड़े दिल वाले फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। पिछले गीत ने बिल्कुल कहा कि जो पल है बस यही है, इसी पल को जी ले, अगले पल की चिंता में इस वक्त को मत गवा, यही पल है जीने के लिए और खुशियों के लिए।

कमांडो फिल्म का गाना आपने सुना विजय बेनेडिक्ट की आवाज़ और अलीशा चनोई की आवाज़ में. अनजान ने इसे लिखा और बप्पी लाहिड़ी ने संगीत दिया. काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, उसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिंदगी का असली हुनर यही है कि काम के बीच अपने सुकून के पल भी बचाए जाएं. अगर हम सिर्फ काम में ही उलझे रह गए तो मंजिल तो मिल जाएगी मगर सफर की खूबसूरती कहीं पीछे छूट जाएगी. इसलिए जरूरी है कि जिम्मेदारियां भी निभाई जाएं और अपने मन को सुकून देने वाले छोटे छोटे लम्हों को भी पूरी शिद्दत से जिया जाए. काम और सुकून दोनों का साथ ही जिंदगी को संतुलित, खूबसूरत और अर्थपूर्ण बनाता है. शायद यही जीने की असली कला है और यही जिंदगी का सच्चा सुख भी.

जूली फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने। कितने सुकून भरे पल हैं ये, मीठा मीठा संगीत कानों में घुल रहा है और मीठी मीठी नींद पलकों पर धीरे धीरे उतर रही है। ऐसे लम्हों में लगता है जैसे सारी थकान कहीं खो गई हो और रात अपनी नर्म बाहों में हमें प्यार से सुला रही हो।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 59 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने के विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्यों को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारिडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपये और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपये मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। वहीं अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबुडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:10 और 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

सोने की चिड़िया फिल्म का गाना आपने सुना तलत महमूद और आशा भोसले की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने दिल कब किससे और क्यों जुड़ जाए इसका फैसला अक्सर इंसान नहीं कर पाता फिर भी मोहब्बत में दूसरे की रजामंदी और एहसास की अहमियत बनी रहती है इसलिए शायर बड़ी नफासत से पूछता है तू बता दे प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं

राजहट फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। कुछ लोग जिंदगी में बाहर की तरह आते हैं, उनकी मौजूदगी से हर लम्हा महक उठता है, लेकिन जब वो जाते हैं तो अपने साथ कई अनकहे सवाल छोड़ जाते हैं। दिल बार बार यही पूछता रह जाता है, क्या राज था जो दिल में छुपाकर चले गए। शायद मोहब्बत की कुछ दास्तानें कभी मुकम्मल नहीं होती, इसलिए उनकी खामोशियां भी उम्र भर सुनाई देती रहती हैं।

दंगा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। कुछ रिश्ते वक्त की धूल में धुंधले जरूर पड़ जाते हैं, लेकिन दिल की किताब से कभी मिटते नहीं। शायद इसीलिए गीतकार लिखता है, दिल से भुला दो तुम हमें, हम ना तुम्हें भुलाएंगे। इसमें शिकायत कम है और वफा का एहसास ज्यादा है, जैसे कोई चुपचाप ये कह रहा हो कि अगर तुम्हारी खुशियों के लिए मुझे यादों में भी रहना पड़े तो भी तुम्हारी याद मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी।

बाजार फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया श्याम सुंदर ने।

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

झांझर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सी रामचंद्र ने। ये पुरानी संगीत की धुनें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि दिल के उन कोनों को भी छू जाती है जहां अनगिनत यादें चुपचाप बसी होती हैं। इनमें बीते हुए लम्हों की खुशबू है, अनकहे जज्बातों की गर्माहट है और रिश्तों की मासूमियत का एहसास भी।

भाभी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। क्या ही नाजुक और दिलकश अंदाज था इस गीत का। महज एक सवाल और एक जवाब में मोहब्बत का पूरा जहां समा गया है। जिसका नाम हर धड़कन के साथ लिया जाता हो उसका परिचय शब्दों से नहीं दिया जा सकता। जब कोई दिल में बस जाए तो उसकी पहचान जुबान की मोहताज नहीं रहती। इस गीत की मासूम शरारत और प्रेम की गहराई आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी अपने दौर में रही होगी। पुराने गीत सचमुच कम शब्दों में बड़े बड़े एहसास कहे जाने का हुनर रखते थे।

बहार फिल्म का गाना आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। सैया दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे, कितनी प्यारी चुलबुली और मन को गुदगुदा देने वाली धुन है ये। इस गीत में प्रेम का निमंत्रण भी है, अपनापन भी और एक मासूम सी शरारत भी, जिसे कोई अपने प्रिय से मुस्कुराते हुए कह रहा हो, एक बार मेरे दिल में जगह बना लो, फिर कभी उसे छोड़कर मत जाना, और फिर चम चमा चम चम। इन शब्दों की झनकार गीत में ऐसी मिठास खोल देती है कि अचानक ही होंठ मुस्कुरा उठते हैं और मन थिरकने लगता है।

जीलर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। प्यार जब दिल में उतर जाए तो फिर चैन और आराम दोनों ही कहीं पीछे छूट जाते हैं। दिल हर धड़कन में उसी का नाम दोहराता रहता है। तभी तो कहा गया है, हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ आराम कहाँ।

अनुराधा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि शंकर ने। कभी कभी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो गुजर तो जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। वक्त आगे बढ़ता रहता है मगर यादें वहीं ठहरी रहती हैं। जब उन पलों की खुशबू फिर से मन को छूती है तो दिल से और होठों से यही आवाज आती है, हाय रे वो दिन क्यों ना आए।

चार दिन और चार रातें फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने।

वक्त हुआ है 1:54 और ठीक 33 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

काली टोपी लाल रुमाल फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने। दर्द की भी अपनी एक अजीब फितरत होती है, कभी वक्त उसे कम नहीं कर पाता तो कभी दवा भी बेअसर रह जाती है। इंसान हर दर पर उम्मीद लेकर जाता है, हर रास्ता आजमा लेता है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ यादों के सहारे जीना सिखा देते हैं। तभी तो ये एहसास दिल से निकलता है, न तो दर्द गया न दवा ही मिली, मैंने ढूंढ के देखा जमाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। नाइजीरिया के कडुना राज्य में बंदूकधारियों ने 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य को घायल कर दिया। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा कि यह हमला कडुना राज्य के कौरव परिषद क्षेत्र के नारीडोन गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी इसी समय इसी समुदाय पर हमला हुआ था। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता ने टूर्नामेंट के सफल आयोजन और खिलाड़ियों तथा दर्शकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित किया। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष के टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है, जबकि अगले वर्ष से विजेता टीम को 2,00,000 रुपए और उपविजेता टीम को 1,00,000 रुपए मिलेंगे। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। अंकुश भी पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने एंटीगुआ और बारबूडा के जान जालान को सर्वसम्मत निर्णय से 5-0 से हराया। बुधवार को क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला सेशल्स के जेड माइकोक से होगा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इस बीच तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. A correspondent reports that for the sixth consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Rajya Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIRs filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw four adjournments while Rajya Sabha faced five adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju alleged that Congress and its allies are deliberately not allowing discussion in the House. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandana and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominently in their discussion along with several other interesting topics. The Prime Minister expressed happiness after hearing about their journey and insights into their future plans. Mr. Modi also extended his best wishes to the entire Skyroot Aerospace team. The Uttar Pradesh government informed the Supreme Court that it has set up a four-member special investigation team SIT headed by Inspector General of Police IG for the Lucknow Range, Kiran S., to probe the alleged embezzlement of the donations received by the Ram Temple Trust in Ayodhya. The team will also include a DIG rank officer, a senior superintendent of police and an additional SP. The top court asked the state government to include a forensic auditor as the fifth member of the SIT, which will submit its first status report within 2 weeks. Meanwhile, a special court in Uttar Pradesh extended the judicial custody of all 8 accused in the alleged Ram Temple donation theft case by 14 days. Foreign Secretary Vikram Misri commenced his official visit to China today with a meeting with Vice Minister of the International Department of the Central Committee of the Communist Party of China, Sun Haiyan. They discussed ways to deepen implementation of the guidance of the leaders for bilateral relations, including addressing issues of priority to both sides and by promoting political people-to-people academic and think tank exchanges. The Foreign Secretary also met Deputy Secretary General of the 14th National Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference, Hong Liang. The Digital India Bhashini Division under the Ministry of Electronics and Information Technology conducted a multilingual AI workshop for officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat to promote language-first legislative governance. The workshop showcased AI-powered language technologies aimed at making legislative processes more inclusive, accessible and citizen-centric. Indian weightlifter Gyaneshwari Yadav clinched a silver medal in women's 53kg category at the Commonwealth Games in Glasgow. Asian Championships bronze winner Gyaneshwari lifted 88kg in the snatch section and 111kg in clean and jerk for a total lift of 199kg. Onome Obolola Didi of Nigeria won the gold medal with the Commonwealth and Games record total lift of 206kg. Another Indian weightlifter, Bindya Rani Devi, won the bronze medal in women's 58kg category competition. Bindya Rani lifted 87kg in the snatch section and 112kg in clean and jerk for a total lift of 199kg. And President Draupadi Murmu has congratulated Gyaneshwari Yadav on securing the silver medal in the women's 53kg weightlifting event and Bindya Rani Devi Sarukhaibam on winning a bronze medal in the women's 58kg weightlifting event at the Glasgow Commonwealth Games 2026. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। रात सुरमई जैसे किसी चित्रकार ने आसमान पर गहरे नीले और काले रंगों से एक खूबसूरत तस्वीर उकेर दी हो। दिन भर की भागदौड़ के बाद यही वो वक्त है जब दुनिया की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है और दिल अपनी ही धड़कनों को सुनने लगता है।

दिल की राहें फिल्म का गाना आपने सुना। मन्ना डे और उषा खन्ना की आवाज में नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। अपने सुरों में मेरे सुरों को बसा लो, कितनी खूबसूरत बात कह जाता है ये भाव। जब दो सुर एक दूसरे में इस तरह घुल जाएं कि उनमें अलगाव की कोई रेखा ना बचे, तब केवल एक धुन जन्म लेती है जो समय की सीमाओं से परे चली जाती है। शायद इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम अपनापन है।

दस्तक फिल्म का गाना आपने सुना मदन मोहन की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। ये गीत विरह, अकेलेपन और अनकहे दर्द की ऐसी अभिव्यक्ति है जहां शब्द कम पड़ जाते हैं और केवल संगीत दिल की बात कहता है।

फिल्म चोरी चोरी का गाना आपने सुना अफरोज बानो की आवाज में, संगीत दिया साजिद वाजिद ने। सावन की पहली फुहारें बरसती ही जाने कितनी बेटियों को अपना मायका याद आ जाता है। झूले, पेड़ों की हरियाली, माँ की ममता और बाबुल का स्नेह, सब कुछ जैसे मन को पुकारने लगता है। तभी तो ऐसे गीत पीढ़ियों से दिलों में बसे हुए हैं। वो केवल मौसम नहीं, रिश्तों की खुशबू भी साथ लाते हैं।

वक्त हुआ है 2:27 और ठीक 42 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

इम्तिहान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। शाम तो हर रोज वैसी ही होती है, मगर हर शाम का एहसास एक सा नहीं होता। कभी वही शाम यादों की चादर ओढ़ लेती है, कभी किसी अपने की आहट बन जाती है, और कभी यूं ही दिल को सुकून दे जाती है। आज की शाम भी कुछ ऐसी ही है।

दीदारे यार फिल्म से आपने ये गजल सुनी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। अमीर मीनाई ने ये गजल लिखी और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। महबूब के चेहरे से नकाब धीरे धीरे सरक रहा है और उसकी खूबसूरती भी परत दर परत सामने आ रही है। उस नजारे का लुत्फ जल्दबाजी में नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता है।

अर्पण फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:47 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

रिश्ता कागज का फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने

वक्त हुआ है 2:53 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही नीता अग्रवाल के साथ तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए

फिल्म आशा से अभी आपने एक गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को SIT में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। SIT 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत MV ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सांद्र पोलिश्चुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना USP पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया और भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। NISM में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि SEBI की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीमों ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा तथा मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 10 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

किसी से जान पहचान होती है, पहली मुलाकात होती है और कई बार पहली मुलाकात इस तरह की मुलाकात हो जाती है जो जीवन भर की याद बन जाती है या कहें कि रिश्ता भी बन जाता है। इसी तरह की पहली मुलाकात से सजा ये गीत आइए सुनते हैं।

रफी आशा भोसले की स्वरों से सजाई गई, तभी आपने सुना। ओपी नैयर का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना। 1967 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम दो दिलों की दास्तान। ये गीत आपने सुना।

शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया गीत अभी आपने सुना साथियों, हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के संयुक्त स्वर थे। फिल्म का नाम हमराही, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1963 में। साथियों, रात का समय और नींद न आने का सबब भी खोज रहे हम कई बार, ऐसा हो भी जाता है साथियों, कई बार नींद नहीं आती, ऐसे में ओल्ड कोल्ड सुरीले गीत हम सफर बनते हैं, हमराही बनते हैं, तो दिल को ताजगी मिलती है, सुकून मिलता है।

गुलशन बाबरा की लिखी रचना आपने सुनी साथियों। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था, लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों का जादू, फिल्म का नाम परिवार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1968 में। साथियों, जब तक जीवन में कोई हमसफर नहीं आता तब तक बात ही अलग होती है, लेकिन जैसे ही हमसफर जीवन में प्रवेश कर लेता है जीवन भर के लिए, जी हाँ, तो बात बिल्कुल अलग ही हो जाती है। दुनिया नई नई से दिखने लगती है और बहुत सी हमारी बातें बदल भी जाती हैं, यानी सकारात्मकता का पुट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है।

12 ओ क्लॉक इस फिल्म का गीत साथियों अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ों से सजा ये नगमा था। 1958 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी साथियों। ओ पी नैयर का संगीत था मजरूह। सुल्तानपुरी की लिखी बहुत ही सुंदर ये प्यार भरी रचना थी।

शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध किया ये गीत हसरत जयपुरी की लिखी रचना मुबारक बेगम मोहम्मद रफी की आवाजें हमराही फिल्म का नाम

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत आपने सुना प्यासा फिल्म से। 1957 रिलीज ये फिल्म। सचिन देव बर्मन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की लिखी रचना। और जब साथियों दिल से दिल की डोर बंध जाती है तो क्या होता है? जी हाँ, यही कहते हैं हम सभी। क्या कहते हैं?

और हम भी इन सुंदर गीतों की जोरी से बंधे हुए हैं, कहाँ जाएंगे, यही लौट लौट करके आएंगे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही एफएम कोच 100.1 मेगाहर्ट्ज से। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना, 1969 रिलीज। इस फिल्म का नाम धरती कही पुकार की। साथियों, उपहार तो बहुत लिए दिए जाते हैं। जाहिर उपहार जब हम किसी को देते हैं तो बहुत सोचा समझा जाता है कि भाई क्या ऐसी चीज़ दें जो काम भी आए, अच्छी लगे। इसी तरह की बातें हमारे जहन में होती हैं, लेकिन इस अगले गीत में उपहार दे रहे हैं, ले रहे हैं, क्या उपहार आ रहा है, स्वीकार किया जा रहा है या नहीं, सुनते हैं इस नगमे में।

जी हाँ, स्वीकार हो गया इनका जो गिफ्ट ये दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, और दिल का गुलदस्ता बाहों का हार। भाई ऐसा उपहार तो क्या बात है। शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया ये गीत शैली शैलेंद्र ने लिखा था। शारदा और किशोर कुमार की आवाजों का सुंदर समन्वय था इस गीत में। फिल्म का नाम वचन, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में। और अब सुंदर सवाल, सुंदर जवाब से सजा ये गाना।

शिकारी फिल्म से ये रचना भी आपने सुनी 1963 रिलीज ये फिल्म थी। साथियों लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी, जीएस कोहली का संगीत और फारूक कैसर की लिखी रचना थी। साथियों बात जब हम करते हैं तो तारीफ का जो अंदाज़ होता है वो बहुत निर्भर करता है कि हमारे रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। तारीफ भी उसी तरह से तो होती है, और हम तो कहते हैं कि जो बात अच्छी लगे, जो गीत अच्छा लगे, बात अच्छी लगे, घटना अच्छी लगे, उस बात घटना या कोई भी वो शय हो इस दुनिया की, उसकी तारीफ बेबाक रूप से पारदर्शिता के साथ बिल्कुल ईमानदारी से कर देनी चाहिए, जैसे कि ये कर रहे हैं यहाँ।

मुकेश और लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं छाया फिल्म से 1961 रिलीज फिल्म सलील चौधरी का संगीत राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। इसी गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मॉनसून सत्र के लगातार छठे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन

0: के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस की हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मंत्रालय की प्रमुख अद्वितीय विक्रय योजना यूएसपी पहल की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री सिंधिया ने कहा कि मंत्रालय की भूमिका केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करना और कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों को जोड़ना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने नवनियुक्त अधिकारियों से सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया तथा भारत के पूंजी बाजारों की नींव के रूप में विश्वास पर बल दिया। एनआईएसएम में आयोजित एक दीक्षांत कार्यक्रम में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि सेबी की भूमिका विनियमन से परे निवेशकों के विश्वास की रक्षा तक फैली हुई है। उन्होंने निरंतर सीखने पर बल दिया और पेशेवर विकास के लिए सेबी के समर्पित क्षमता निर्माण विभाग और शिक्षा पोर्टल का उल्लेख किया। लद्दाख में द्रास के गोशान अंतर्राष्ट्रीय पोलो स्टेडियम में कल 6वें लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस स्वदेशी खेल प्रतियोगिता में 3 महिला टीम सहित 18 टीम ने भाग लिया। भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में पशुपालन विभाग की टीम को 2-0 से हराकर प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हेविट को शिकस्त दी। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज इसी तरह के मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11:06। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, जीवन पथ पर चलते चलते कई बार ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो अजनबी होकर भी बड़े अपने से लगते हैं। उनकी आभा एक अरुणिमा भांति होती है जो हमारे जीवन पथ को प्रकाशवान करती है।

किशोर कुमार की आवाज़ से सजा ये गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, असद भोपाली की लिखी रचना। फिल्म का नाम हम सब उस्ताद हैं, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1965 में। और अब दिल की मुराद पूरी हुई, घर आ गए हैं दिल में बसने वाले।

लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत आवारा फिल्म से अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी।

साथियों जब कभी अकेले तन्हा होते हैं और बहुत से प्रश्न कई बार मन में होते हैं, बहुत सी उलझनें होती हैं, ऐसे में जब हम याद करते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो बहुत बहुत बहुत अपना है और हमें लगता है कि उसे याद करके शायद हमारे मन का बोझ भी कुछ हल्का हो जाएगा, इसी तरह की भावना होती है और वाकई ऐसा होना भी चाहिए। ऐसे रिश्ते, ऐसे दोस्त होने चाहिए जीवन में जिन्हें हम सोच करके भी खुश हो सकें, गर्व महसूस कर सकें।

गुलजार की लिखी ये रचना थी, शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी शारदा की आवाज़ों का जादू, फिल्म का नाम सीमा, जो रिलीज़ हुई थी वर्ष 1971 में।

0: राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना भी आपने सुनी। फिल्म का नाम भाभी, 1957 रिलीज। ये फिल्म लता मंगेशकर की आवाज थी और संगीत दिया था इस गीत के लिए चित्रगुप्त ने। साथियों, अरुणिमा काल में सूर्य की लालिमा, उसकी आभा विद्यमान है और हरी घास पर कुछ है जो चमक रहा। क्या है वो, किसका है?
1: मिला है

लता मंगेशकर की आवाज़ से सजा ये गीत अभी आपने सुना साथियों। सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना, फिल्म का नाम परख, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1960 में।

संकल्प फिल्म से ये सुंदर रचना अभी आपने सुनी। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। सुलक्षणा पंडित और विनोद शर्मा की आवाजें थी, खय्याम का संगीत, कैफी आजमी की लिखी रचना। और आइए अब थोड़े से बच्चे भी बन जाते हैं। बच्चा बनना बहुत ज़रूरी है साथियों जीवन में, तभी तो तनाव मुक्त रह पाएंगे। तनाव तो होते ही हैं, समस्या परेशानी चलती ही रहती हैं जीवन में, लेकिन सुंदर संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए, सकारात्मकता के साथ यदि हम आगे बढ़ते रहें तो जीवन में परेशानियां जो आएंगी वो जल्द ही चली जाएंगी या हमें कम महसूस होंगी। आइए सुनते हैं ये सुंदर रचना।

मधुबाला झावेरी की आवाज से सजा ये गीत हमने सुना। हंसराज बहल का संगीत था, भरत व्यास की लिखी रचना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम जग्गू।

0: शमशाद बेगम लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत बैजू बावरा फिल्म से अभी आपने सुना। 1952 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। शकील बदायूनी ने की लिखी रचना थी और नौशाद का संगीत था। साथियों हमारी सीमा प्रहरी विपरीत परिस्थितियों में भी दिन हो रात हो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हम सभी की रक्षा करते हैं, उन्हें उन सबको नमन करते हैं हम। और जब उनको घर परिवार की याद आती है तब कई बार ऐसा होता है ड्यूटी से उन्हें छुट्टी भी नहीं मिलती है, या कई बार वो अपने घर की तरफ चल पड़े होते हैं, रास्ते में होते हैं, मंजिल तक पहुंचे भी नहीं होते और रास्ते में ही उन्हें संदेश मिलता है कि तुरंत वापस आ जाएं, इमरजेंसी है। ऐसा भी होता है साथियों। तो और जब छुट्टी के दिन आ जाते हैं कि भाई छुट्टी होने वाली है अब तो घर जाएंगे हम, तो उस समय क्या माहौल होता है, उसी तरह की परिस्थिति पर ये गीत बहुत ही सुंदर सजा है हमारी फिल्म जगत में।
1: बन जाए समंदर रोशनाई का बयां, फिर भी न होगा हमसे ये

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत आस का पंछी फिल्म से अभी आपने सुना साथियों। 1961 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना।

लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और कमल बाराउट के स्वर थे इस गीत में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, भरत व्यास की लिखी रचना। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम सती सावित्री।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं अग्नि परीक्षा फिल्म से 1981 रिलीज है फिल्म सलील चौधरी का संगीत योगेश की लिखी रचना और अब आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है

लता मंगेशकर हेमंत कुमार के स्वरों से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं एक ही रास्ता फिल्म से। 1956 रिलीज फिल्म, हेमंत कुमार का संगीत मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज सुबह 11 बजे तक के लिए कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मानसून सत्र के लगातार छठे दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस भी हमने अपील किया फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित

0: किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में चार सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में पांचवें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी दो सप्ताह के अंदर पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। विदेश मंत्रालय ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमफुर्मी में हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्जेंड्र पोलिशुक को तलब किया है। इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हो गई है। मंत्रालय ने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की निंदा कड़ी है। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं, यह अस्वीकार्य है और इनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। एक दिन के लिए निर्धारित चुनाव अब अगले महीने की 10 तारीख तक तीन चरणों में आयोजित किए जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने चुनाव का बहिष्कार किया, जबकि संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीटीआई का दावा है कि पिछले महीने जेएएसी के विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसक झड़पों में 100 से अधिक लोग मारे गए, जिसके कारण लगभग 50 दिनों तक क्षेत्र में अशांति रही। नाइजीरिया के कडुना राज्य में कल बंदूकधारियों ने कम से कम 30 लोगों की हत्या कर दी और कई अन्य घायल हो गए। नागरिक समाज समूह दक्षिणी कडुना शांति और सुरक्षा नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने बताया कि यह हमला कडुना राज्य के कौरा परिषद क्षेत्र के नारीडो गांव में हुआ। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी समुदाय पर इसी समय हमला हुआ था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक पहुंचाने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की। वे कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि कार्यबल देश के खिलौना उद्योग को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ने, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिला शूट पुट F57 फाइनल में जीत हासिल करके देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही पांचवें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों के भारोत्तोलन के 79 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। वहीं एथलेटिक्स में सर्वेश अनिल कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद में दूसरा स्थान हासिल करके एक और रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले मीराबाई चानू ने 190 किलोग्राम भार उठाकर महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए खिताब जीतकर भारत के लिए स्वर्ण पदक की शुरुआत की। भारत के आदित्य पटनायक ने सेपांग अंतर्राष्ट्रीय सर्किट में गोल्ड व्यूज चैंपियनशिप मलेशिया के तीसरे दौर में स्पोर्टिंग क्लास जीतकर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार रेसिंग खिताब जीत लिया है। इससे पहले वे लगातार 2 साल पोलो कप इंडिया में उपराष्ट्रीय चैंपियन रह चुके हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी आज ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Both the Houses of Parliament were adjourned yesterday following uproar by opposition parties on alleged police action during students' protest over NEET issue. In the Lok Sabha, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced yesterday. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh introduced the bill in the House. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं इस समय 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 5:11 और 18 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, विवेकानंद जी का कथन है, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं होना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक लेकर जाता है।

हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजा ये गीत आबे हयात फिल्म से हमने आपको सुनवाया। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। सरदार मलिक का संगीत था और हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी।

बैचू बावरा अभी आपने इस फिल्म से ये रचना सुनी 1952 रिलीज ये फिल्म आवाजों का जादू था उस्ताद आमिर खान और डीवी पलुस्कर का नौशाद का संगीत था शकील बदायूनी की लिखी रचना थी साथियों जब धरती किसान की मेहनत से अन्न से परिपूर्ण होती है तो किसान के साथ साथ ये धरती भी अपनी प्रसन्नता जाहिर करती है इस तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ख्याल रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने उसे साफ रखने वास्ते तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके ज़रूर प्रसन्नता का अनुभव करेंगे

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत आप सुन रहे हैं आईना फिल्म से। 1974 रिलीज ये फिल्म, नौशाद का संगीत, जानिसार अख्तर की लिखी रचना। साथियों, भोर का समय, किसी घर में नृत्य कार्यों की शुरुआत तो कहीं स्कूल दफ्तर जाने की तैयारी, और ऐसे में साथी बनते हैं ये गीत जो हमें और भी ऊर्जावान और आशावादी बनाते हैं।